0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च नमो

त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसन् मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च मे मे च त्रयस्त्रिगुंसत्र

महाय नमः मातरिश्वणे नमः नभस्वते नमः नागहारदृशे नमः पुलस्त्याय नमः पुलहाय नमः अगस्त्याय नमः जातुकर्ण्याय नमः पराशराय नमः निरावरणधर्मज्ञाय नमः विरिञ्चाय नमः विष्टरश्रवसे नमः आत्मभुवे नमः अनिरुद्धाय नमः अत्रिज्ञानमूर्तये नमः महायशसे नमः लोकचूडामणये नमः वीराय नमः चण्डसत्यपराक्रमाय नमः व्यालकल्पाय नमः महाकल्पाय नमः महावृक्षाय नमः कलाधराय नमः अलङ्करिष्णवे नमः अचलाय नमः रोचिष्णवे नमः विक्रमोत्तमाय नमः आशुशब्दपतये नमः वेगिने नमः प्लवनाय नमः शिखिसारथये नमः असंसृष्टाय नमः अतितये नमः शक्राय प्रमाथिने नमः पापनाशनाय नमः वसुश्रवसे नमः कव्यवाहाय नमः प्रतप्ताय नमः विश्वभोजनाय नमः जर्याय नमः जराधिशमनाय नमः लोहिताय नमः तनूनपाते नमः वृषदश्वाय नमः नभसे नमः योनये नमः सुप्रतीकाय नमः तमिस्रघ्ने नमः निदाघाय तपनाय नमः मेघाय पक्षाय नमः परपुरञ्जयाय नमः मुखानिलाय नमः सुनिष्पन्नाय नमः सुरभये नमः शिशिरात्मकाय नमः वसन्ताय माधवाय नमः ग्रीष्माय नमः नभस्याय नमः बीजवाहनाय नमः

नमः त्रिविद्याय नमः नरवाहनाय नमः मनोबुद्धये नमः अहंकाराय नमः क्षेत्रज्ञाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः तेजोनिधये नमः ज्ञाननिधये नमः विपाकाय नमः विघ्नकारकाय नमः अधराय नमः अनुत्तराय नमः ज्ञेयाय नमः ज्येष्ठाय नमः निःश्रेयसालयाय नमः।

जनकाय नमः, चारुविश्शल्याय नमः, लोकशल्यकृते नमः, चतुर्वेदाय नमः, चतुर्भावाय नमः, चतुराय चतुरप्रियाय नमः, आम्नायाय नमः, समाम्नायाय नमः।

0: कन्या इव वहतु मे तवाउ अञ्जिञ्जाना अभिचाकशिमी।
1: यत्र सोमः सूयते यत्रायज्ञो घृतस्य धारा अभितत्पावन्ते
2: अभ्यर्षत सुष्ठु।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Naminandi Adigal Nayanar, presented by Singapore Shankaran Arayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे नमिनंदी अडिगल संत की कहानी। दक्षिण के चोल मंडल में एक गांव था इंतेरू, जहां एक ब्राह्मण परिवार में नमिनंदी का जन्म हुआ। तिरुवारूर की दूरी वहां से अधिक नहीं है। एक बार तिरुवारूर के प्रसिद्ध मंदिर में त्यागराज शिव के दर्शन करके जब भक्त नमिनंदी बाहर आए तो उनके मन में भगवान के प्रति दीप सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। निकट के एक घर में जाकर उन्होंने दीप जलाने के लिए तेल मांगा। उस घर में किसी अन्य धर्म के लोग रहते थे, जिनके पूर्वक कहा, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, कहते हैं ब्राह्मण के हाथ में ही अग्नि होती है, ऐसे में दीप जलाने की आवश्यकता क्यों है? फिर भी यदि दिया जलाना चाहो तो पानी लेकर जला डालो ना। नमिनंदी से यह तीखा व्यंग्य सहन नहीं हुआ। जैसे त्यागराज के मंदिर में गए और भगवान से शिकायत की, तत्काल एक स्वर पूजा, पानी से दिया जलाओ। भक्त नमिनंदी तिरुवारूर मंदिर की पुष्करणी कमलालय से घड़ा भर कर पानी लाए और दिया जलाया। आश्चर्य, सभी दीपक पूर्ण प्रकाश देकर जलने लगे। इसके बाद तो वे इसी सेवा में रम रहते थे। एक दिन उत्सव मूर्ति की शोभा यात्रा पास के मननी गांव की ओर जा रही थी। नमिनंदी ने विधि प्रकार एक स्थान पर खड़े होकर वह मूर्ति के दर्शन किए। जब वे घर लौटे तो उनके मन में विचार आया, सभी जातियों के लोग शोभा यात्रा में थे, कहीं छूट तो नहीं लगी। जब वे घर पहुंचकर अंदर नहीं गए तो पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया, भगवान की शोभा यात्रा में दर्शनार्थ खड़ा था, सबके बीच रहने से अपवित्र हो गया हूँ, यहाँ स्नान करने के पश्चात ही घर में प्रवेश करूंगा। दर्शन के समय मन पवित्र था, जाति आदि का विचार कहाँ से आता। स्नान करके जब वो घर में गए तो उस दिन जब वो रात के को सो रहे थे तो उनके सपने में भगवान आए और उनसे बोले, बस क्या तुम नहीं जानते कि तिरुवारूर के सभी निवासी हमारे गण हैं? ऐसे में छुआछूत का विचार क्यों? स्वप्न टूटते ही नमिनंदी ने अपनी भूल के लिए शिव से क्षमा मांगी और पहले से भी अधिक लगन से सेवा कार्य करने लगी। उनके यहाँ एक बार तिरुनावकरसर संत का अतिथिय करने का सौभाग्य भी मिला। तिरुनावकरसर ने उन्हें सेवक मणि की उपाधि से विभूषित किया। इस कथा से हमें सामाजिक परिस्थितियों के कारण विद्यमान ऊंच नीच के भाव का पता चलता है। मध्ययुग में छुआछूत की भावना ने एक रोग के रूप में हमारे समाज में प्रवेश करके जड़ जमा ली। नमिनंदी जब तक श्रद्धा भाव से प्रभु से प्रभु की शोभा यात्रा देख रहे थे उस समय आनंद मग्न थे। यहाँ कौन है इस बात की उन्हें जरा भी ध्यान नहीं आई। मार्ग में और घर के एकांत में यह प्रश्न उठा। सामाजिक प्रथाओं परंपराओं को स्वीकार करके चलने वाले नमिनंदी को यदि कोई और सच्चाई समझाता तो वे उसके बाद को तुरंत नहीं मानते। जब भगवान ने स्वयं सपने में आकर कहा, तिरुवारूर के सभी निवासी हमारे गण हैं, सभी उनको समझ में आया कि सभी ने पशुपात कालामुख महावती पौध जैन आदि सभी मातवलंबी सम्मिलित हैं। अतः स्पष्ट है कि शैव धर्म सब धर्मों और जातियों को लेकर मानव मात्र को सम्मान देकर चलने में विश्वास करता है।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: इसलिए हमने भूमिका में कहा था, स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी साधन सापेक्ष क्रीड़ा करके आनंदित हो, ऐसी इच्छा परमात्मा की हुई, इसकी शिवजी की हुई, माया वृत्ति से ये इच्छा हुई। परमात्मा को ये जो इच्छा हुई है, मैं संसार में क्रीड़ा करूं, खेल खेलूं और खेलकर आनंदित हूं, इस इच्छा के चलते प्रपंचमखिलम सृजसी, अपने ही सृष्टि की है, खुद अपने ही इस प्रपंच को बनाया है। क्यों बनाया? खेलने के लिए बनाया। तब फिर क्रीड़ा मृगास्ते जनाहा, संसार में आपके बायक और जो भी है, आपके अलावा जो है, सब क्या है? क्रीड़ा मृग है। क्रीड़ा मृग अर्थात खेल के खिलौने, खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं ना, उनको क्रीड़ा मृग बोलते हैं। वास्तव में बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं। इंसान को भी गधा भले ही अच्छा न लगे, गधे का बच्चा बहुत आनंद देता है, उसकी चाल ढाल ही बड़ी निराली होती है, बड़ा आकर्षण होता है, मतलब भोला भाला पना देखता है। कुत्ता भले ही पर अच्छा न लगे, कुत्ते के बच्चे बड़े आनंददायक होते हैं। किसी की भी, चाहे बकरे के देख लो, चाहे गाय के बछड़े देख लो, बिल्ली को देखकर व्यक्ति इतना आकर्षित नहीं होता है, बिल्ली के बच्चों को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब मृग देखते हैं या मृग के शावक देखते हैं, मन में एक अलग प्रकार की स्फूर्णा अलग भाव प्रकट होता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, जनाहा क्रीड़ा मृगाहा, एक क्रीड़ा मृगा, संसार में जितने भी जीव हैं वो सब आपके क्रीड़ा मृग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, ध्यान देना, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे पक्षी हो चाहे कीट पतंग हो, ये सब आपके खिलौने हैं। इन सब से आप क्रीड़ा करते हो, खेलते हो, खेलने के प्रयोजन से आपने इनका निर्माण किया है, बनाया है, इनकी रचना की है। तो शंकराचार्य जी आके क्या कहते हैं, यत कर्मा चरितम मया च, तब मैं जो चेष्टा करता हूं, हम सभी क्रीड़ा मृग हैं, इसलिए हम जो भी चेष्टा करेंगे, चाहे उठेंगे चाहे बैठेंगे चाहे सोएंगे, चाहे हंसेंगे चाहे रोएंगे, यत कर्मा चरितम मया यत कर्म आचरितम, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं भवत प्रत्ययी भवत्ये बतत, सारी क्रियाएं आपकी प्रसन्नता के लिए ही हैं। क्योंकि संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मत्यष्टितम निश्चितम। मत्यष्टितम मेरे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है वह चेष्टाएं वो क्रियाएं मैं अपने मर्जी से तो करता नहीं, समझे कि नहीं। मैं अपने मर्जी से तो कुछ करता नहीं क्योंकि मैं तो खिलौना हूं। इस श्लोक को पढ़ते समय में आप शतरंज के खेल को स्मरण कर लो। शतरंज के खेल में राजा होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं कि नहीं है। राजा, मंत्री, सिपाही, घोड़े और ऊंट है। हाथी भी होता है शतरंज में? अच्छा, हाथी भी होते हैं है? शतरंज के खेल में रानी भी होती है, वजीर, मंत्री। रानी की तो बात मैंने नहीं सुनी है। चलो होगी, कोई इतना कुछ होंगे हैं, जरूरत पड़े डालो, नहीं पड़े तो हटाओ। तो कभी भी वो राजा, शतरंज का जो राजा है, राजा कोई साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन भले ही वो शतरंज में राजा हो, उसकी चेष्टा तो खिलाड़ी पर निर्भर है कि नहीं। राजा जीतेगा कि हारेगा, खिलौने के राजा पर निर्भर है कि खेलने वाले पर निर्भर है। इस श्लोक को पढ़ते समय में वो दृश्य को सामने रखो। मान लो कि शतरंज का राजा हार गया, क्योंकि चलने वाले ने गलत चल दी। जिसने राजा ली रखा है, जिसके हाथ में राजा है, चाल चलने वाले ने गलत चल दी, परिणाम क्या हुआ? राजा मर गया। दुख किसको होगा? मरने वाले राजा को होगा कि खेलने वाले खिलाड़ी को होगा? खेलने वाले खिलाड़ी को होगा, क्योंकि राजा तो केवल खिलौने का है। मान लो कि खेलने वाले खिलाड़ी ने चाल में ऐसी चाल चली, इस तरह खेली, राजा जीत गया, राजा बच गया, प्रसन्नता खिलौने को होगा कि खिलाड़ी को होगा? खिलौने को न हारने का दुख है, खिलौने को न जीतने का सुख है। वो सुख और दुख से वो खिलौना असंस्पृष्ट है। खिलौने से हारना और जीतना, इसके संबंध खिलाड़ी पर है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, कुतूहलस्य करणम मत्यष्टितम। आपके प्रसन्नता का साधन रूप में जो खिलौना हो, मेरी जो चेष्टा है वह त्वया निश्चितम, मया यत् चेष्टितम। ध्यान देना, ये शब्द पर ध्यान देना, मया यत् चेष्टितम तत् त्वया निश्चितम। मैंने जो चेष्टा की, मैंने जो क्रिया की, जीतने की क्रिया की या हारने की क्रिया की, वह तो तुम्हारे निश्चय पर निर्भर करता है। किस पोस्ट में जाकर बैठना है वो तो तुम बिठाओगे ना, मैं अपने आप तो जाऊंगा नहीं। और उस बिठाने की जगह पर आपने कैसे बिठाई, किस प्रक्रिया से बिठाई, मुझे प्रयोग करने पर ही आपको सुख होगा और मुझे प्रयोग करके ही आपको दुख होगा। खिलौने को सुख दुख नहीं होता, प्रयोगकर्ता को ही सुख दुख होगा। बाजी जीत गया, खिलौने को क्या खिलाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे हैं? तुमने बाजी जीत ली, जीत लिया, खिलौने को क्या खिलाओगे? उन खिलौनों को तो बाजी जीतने पर भी खेलने के बाद उसी डब्बों में बंद होना है, है कि नहीं? उन खिलौने हार गए, बाजी हार गए, हारने के बाद भी उन खिलौनों को तो वही डब्बे में बंद होना है जिस डब्बे में जीतने पर बंद हुए थे, ठीक ही नहीं? बोल, बाजी हारने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? बाजी जीतने वाले खिलौने कोई दूसरे डब्बे में बंद होंगे? लेकिन जीतने वाला बड़ा आनंद से मिठाई बांटेगा, खाएगा, और हारने वाला बैठकर रोएगा। कौन रो रहा है, कौन मिठाई खा रहा है? खिलाड़ी। तो इसी प्रकार से हे भगवान शिव शंभो पशुपते, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, 66वां श्लोक। संसार में जितने भी जो भी वस्तु का निर्माण किया आपने किया है, किस प्रयोजन से? खेलने के लिए। खिलौनों के रूप में सभी पदार्थों की आपने रचना की है और इन्हीं खिलौनों के माध्यम से आप खूब खेलिए। संभो स्वस्य कुतूहल, आनंद का खूब आनंद लीजिए, खेलिए। करणम माने साधन, मत्चेष्टितम निश्चितम, तस्मात् मामकरक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव प्रयाम। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं आपसे, मैं खिलौना हूं, मेरे से किस प्रकार का खेल खेलना है वह आप ही निश्चय करोगे और मेरे से किस प्रकार की खेल खेलनी है वह आप ही मुझे खिलाओगे, चलाओगे। लेकिन आपके द्वारा परिचालित मैं हार गया, दुख तुम्हें होगा। आपके द्वारा परिचालित मैं जीत गया, आनंद तुम्हें ही होगा। और कहीं कदाचित मेरा अनुरोध इतना ही है कि खिलौने सुरक्षित रहेंगे तो आपको खेलने में भरपूर आनंद आएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध यह है कि आप मेरे से खूब खेलिए, लेकिन अनुरोध इतना ही है। ख्याल आपको रखना है खेलते समय में टूट न जाए। खिलौना टूट गया तो जीतने और हारने का कोई सवाल ही नहीं, खेल ही, खेल की मजा ही खत्म हो गया। खिलौना टूट ना पावे, खिलौने की रक्षा खिलौना खुद करता है, खिलाड़ी करता है। तो आप खिलाड़ी हो कि खिलौने हो? आप खिलौने हो तो आपकी रक्षा खुद आप करोगे, तो खिलाड़ी कौन है? तो खिलौने की रक्षा किसके हाथ में है? तो खिलौने ने इतनी कह दिया, महाराज सावधानी से खेलना, मेरे रोने से आपको आनंद आता है, मुझे खूब रुलाइए, मुझे रोने में आपत्ति नहीं है, ध्यान देना हो, मुझे रुलाकर आपको आनंद आता है तो रुलाइए, खूब रुलाइए, आपको आनंद आनी चाहिए। मुझे हंसाकर आपको आनंद आता है तो खूब हंसाइए, लेकिन ख्याल ये रखना रुलाते रुलाते खिलौना टूट न जाए, फिर दोबारे मुझे रुलाना होगा तो फिर कहां से लाओगे खिलौना? समझेगी नहीं, ये भाव है। भगवान के प्रति, भगवान के सामने आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने आप को एक खिलौने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान शिव को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुरोध ये कर रहे हैं कि खिलाड़ी खेलते समय खिलौना न टूटे, इतने आप ख्याल रखो महाराज, जो खेलना है खेलो, जैसा खेलना हो खेलो। अब देख लो, कोई सिनेमा बना रहा हो और सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सिनेमा में हर प्रकार के पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। रक्षा करने वाले पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो हैं? बोलो, सिनेमा में चोरी करने वाले चोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं है? रक्षा करने वाला हीरो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो गलत काम करने वाले गुंडों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, बोलो? अच्छा काम करने वाला हीरो विलेन, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके बराबर में उसमें बुरा काम करने वाला गुंडा लोफर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? सिनेमा में गुंडों की क्या आवश्यकता है भाई, है? क्या आवश्यकता है? क्यों गुंडों की भूमिका क्यों प्रस्तुत किया गया हुआ, बोलो? अब गुंडे नहीं होंगे तो हीरो अच्छा होगा? अब अंत में क्या करता है, कोई लड़की को जबरदस्ती कर रहा है कोई गुंडा, और लड़की रो रही है, और उसी समय में हीरो पहुंच गया, उसने दो चार मारी गुंडों को, और उसने उन गुंडों से उसकी रक्षा कर दी, और हीरो की वाह वाह हुई, है ना? तो गुंडे की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सिनेमा को हिट करने के लिए गुंडों की भी तो आवश्यकता है कि नहीं, बोलो? महाभारत सीरियल को हिट करने के लिए दुर्योधन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? और महाभारत को हिट करने के लिए शकुनी की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? सबकी आवश्यकता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। वहां शकुनी की भूमिका भी आई, दुर्योधन की भूमिका भी रही, युधिष्ठिर की भूमिका भी रही, दुशासनों की भूमिका भी रही, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी न खींचते होते फिर तुम्हारे कृष्ण को कौन पूछता है? बोलो, फिर तुम्हारा कृष्ण हीरो कैसे हो पाता? जब दुशासनों ने साड़ी खींचना आरंभ किया, द्रौपदी रोने लगी, तब भगवान साड़ी बनकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। कब? दुशासनों की निष्ठुरता के चलते हुई कि नहीं? बोलो, भगवान की कृपा, दुशासन की निष्ठुरता प्रस्तुत न होते तो भगवान की कृपा का क्या पता चलता? तो हीरो हो गए कृष्ण। तो संसार में सभी की आवश्यकता है। आपको रोना भी पड़ेगा, द्रौपदी यदि कहे, मैं द्रौपदी की भूमिका तो पूरा करूंगी लेकिन रोने का काम नहीं करूंगी, तो फिर प्रोड्यूसर निर्माता उसको द्रौपदी की भूमिका में वर्ण करेगा कि नहीं? द्रौपदी को तो रोना ही पड़ेगा, बस पड़ेगा कि नहीं? बोलो, इसी तरह दुशासन की निंदा होती है इसलिए मैं दुशासन का काम नहीं करूंगा, तो महाभारत सीरियल तैयार होगा कि नहीं? बोलो, तुम भी दुशासन बनने को तैयार नहीं, मैं भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं, तो महाभारत सीरियल कैसे बनेगा? बोलो, तो सबकी आवश्यकता है। कहां? खेल खेलने के लिए, नाटक करने के लिए सबकी आवश्यकता है। कभी मुझे हंसना भी होगा तो कभी मुझे रोना भी होगा, लेकिन भगवान मैं इतने अनुरोध करूंगा, मेरा प्रयोग करके भरपूर आनंद लीजिए। शर्त यह है, मेरी रक्षा भी कीजिए। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम्, क्रीडा मृगास्ति जना, यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवति वत्तत। शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, मत्स्यष्टितं निश्चितं, तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, और कोई नहीं करेगा। प्रश्न करते हैं महाराज हमसे आकर, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, दूसरों को रुलाकर ये कौन सा खेल खेलता है परमात्मा भाई? ये भी कोई खेल होता है दूसरों को रुलाकर? प्रश्न करते हैं। दूसरों को मारकर खेलना भी कोई खेल होता है? लेकिन कंस को मारे बिना महाभारत होगा है? बोलो, कंस को मारे बिना महाभारत होगा? द्रौपदी को रुलाए बिना महाभारत होगा? है, द्रौपदी के 5 सोए हुए बच्चों के सिर काटे बिना महाभारत होगा? और तुम प्रश्न करते हो कि ये कहां का नियम है भाई, दूसरे के बच्चों को मारा और महाभारत बना दी। द्रौपदी के सोए हुए 5 बच्चों को अश्वत्थामा द्वारा सिर काटा कि नहीं किया? काट दिया है? काटना पड़ा कि नहीं बोलो? और अश्वत्थामा का सिर मुड़ाना पड़ा कि नहीं, मणि उतारना पड़ा कि नहीं? अच्छा लगा होगा तो अश्वत्थामा को, तुम लोगों ने किसी ने विरोध किया अश्वत्थामा का सिर की मणि को मत निकालो करके? हैं? विरोध किया? करना चाहिए, किसी ने आवाज निकाली? अच्छा किया, सोए हुए बच्चों को मारा था, द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा था, अर्जुन ने ठीक किया, मणि उतार दी, तुम खुश हुए कि भी नहीं बोलो? हैं? तुम खुश हुए कि नहीं? हैं? इसीलिए इतना ही समझना भाई, अपने को भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए खिलौने से ज्यादा नहीं समझना। और अपनी दिनचर्या और चेष्टा में भगवान के संकल्प के अतिरिक्त अपना कोई संकल्प जोड़ना नहीं, अपना पूर्वाग्रह नहीं करना। समस्या कब होती है? हमको खिलौने के रूप में परमात्मा प्रयोग कर रहा है और अपने संकल्प के अनुसार वो हमको चला रहा है और हम उसकी इच्छा विपरीत हम अपना पूर्वाग्रह लेते हैं। नहीं, तुम्हारे चलाने से नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ। तो खिलौना कहीं कभी पूर्वाग्रह करता है? बोलो। खेल में कोई भी खिलौना पूर्वाग्रह करता है? मुझे हाथी के द्वारा नहीं मरवाओ, मुझे राजा के द्वारा मत मरवाओ, कहता है शतरंज का खिलौना। चाहे सेना से मरवाओ, चाहे हाथी से मरवाओ, जिसे मरवाना है मरवाओ, बचाना है बचवाओ, बस खत्म हो गई बात।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: उन तीन ऋणों का स्मरण दिलाने के लिए हमारे गुरुजन आपके कंधे में यज्ञोपवीत डाल देते थे। भैया तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कंधे में तीन का भार है। ये नियम हुआ करता था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए कि तीनों को जनेऊ धारण तीनों का होता है। जिनमें से ब्राह्मण के जनेऊ में 3 धागे नहीं 6 धागे होते हैं कि तुम अपना भी करो और यजमान का भी करो, उसके ऊपर डबल, इसीलिए उसका नाम है द्विज। और क्षत्रिय और वैश्य के जनेऊ में 3-3 धागे होते थे कि तुम्हारे सिर पर 3 ऋण है। 3 ऋणों से तुम अपने आप को उऋण करो, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण है। जिन्होंने तीनों ऋण चुकता कर लिए हैं वो ही ऋण से मुक्त है। ऋण से मुक्त है वो सुखी है। कौन सा ऋण? पहला देव ऋण। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, अर्थात समग्र इंद्रियां दी हैं। तो देवताओं का पूजन कर, उन्हें प्रसन्न कर, समय समय पर देवताओं का अर्चन पूजन करके हमको देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। दूसरा पितृऋण, गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके संतानोत्पन्न करके ब्रह्मा जी की सृष्टि में गृहस्थाश्रम का महत्व है। बोले कब तक? जब तक संतानोत्पत्ति नहीं हो जाती। संतान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ को कहा गया है नारायण, इसलिए कहा कि पितृ ऋण से उऋण होने के गृहस्थाश्रम स्वीकार करो, और ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ऋषियों ने बहुत बड़ा तप किया, बहुत बड़ा तप किया, और उन्होंने दूर दृष्टि से हमें श्रुतियां दी। श्रुतियां ऋषियों से प्राप्त हैं, तो ऋषियों की दी हुई श्रुतियों को विचार करके, उनका चिंतन मनन निति ध्यासन करके, इन ग्रंथों को, सद ग्रंथों को पढ़कर, उनका स्वाध्याय करके, सत्संग करके, स्वस्वरूप को पहचान करके ही हम तीनों ऋणों से उऋण हो सकते हैं। अर्थात जिन्होंने, जिसने अपने आप को तीनों ऋणों से उऋण कर लिया है, जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, वो व्यक्ति सुखी है। हमारे ऊपर जब तक ये तीनों ऋण हैं, देव ऋण और पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ऋषियों का बहुत बड़ा हमारे लिए उपकार है, और इन तीनों ऋणों से उऋण करके जो व्यक्ति ऋण रहित है वही सुखी है। और सुखी कौन है? जिन्होंने तीनों ऋण से अपने आप को उऋण कर लिया है, और जिसके पास संतोष है वही सबसे ज्यादा सुखी है। अर्थात जो संतुष्ट, जो विचारवान होगा, सत्संगी होगा, जिसने सत्य को समझा होगा, वो कभी जीवन से असंतुष्ट नहीं होगा ना। उसके पास सबसे कुछ न होने पर भी सब कुछ है, उसके पास क्या है? बोले संतोष है, उसमें तृष्णा नहीं है। उसकी, उसके पात्र में कहीं उसकी बुद्धि में तृष्णा नहीं है। तृष्णा तो एक ऐसी चीज है, बहुत होने पर भी हमें और करती हुई कंगाल बनाकर रख देती। इसीलिए कहते हैं नारायण, सबका मोह पेट भर सकता है, पर तृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है। वो अपने में खालीपन ही बताती रहती। इसलिए जिसके अंदर तृष्णा नहीं है, संतोष है, वही सबसे बड़ा सुखी है। सबसे बड़ा सुख संतोष है, जिसने अपने आप को तीन ऋण से उऋण कर लिया है और संतुष्ट है, संतोष धन को अपना लिया है, वही सुखी है। यक्ष भगवान ने उन्हें ये उपदेश दिया, यज्ञ भगवान को ये उत्तर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। दूसरा प्रश्न था कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि आश्चर्य यही है, संसार सबसे, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि हम अपने हाथों से न जाने कितने लोगों को विदा करके आते हैं, कितने प्रियजनों को छोड़कर आते हैं, कितने लोगों को विदा करके आते हैं, परंतु फिर भी अपने आप के लिए सब भूल जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं। ये घटना हमारे साथ भी घटने वाली है। यदि हमें ये याद रहे कि जैसे हम इनको छोड़ के आए हैं, ऐसे ही मैं भी जाने वाला हूँ, अपनी मृत्यु याद रहे, तो नारायण कोई व्यक्ति पाप न करे, कोई व्यक्ति पाप न करे। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और जाकर बोला, महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, भगवान कैसे मिलेंगे, कृपा करके आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करा दीजिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करा दीजिए, मुझे कैसे भगवान मिलेंगे ये बताइए। महाराज जिद करने लगा। महात्मा ने कहा, भैया तू भगवान की बात करता है, मुझे तो दिखता है कि आज से सातवें दिन तेरी मृत्यु होने वाली है। है महाराज, सातवें दिन मेरी मृत्यु होने वाली? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, सातवें दिन तू मरने वाला है। अच्छा, सात दिन है मेरे पास? तो बोले अच्छा, तब तू ये करना कि तेरी सात दिन में तेरी मृत्यु हो, वो टल सके, उसके लिए तू ये मंत्र का जप कर। महात्मा जी ने उसे मंत्र बता दिया, महामृत्युंजय मंत्र जप तू, तेरी मृत्यु टल जाएगी। बस अब क्या था, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये महामंत्र जपने लगा महामृत्युंजय, और मृत्युंजय मंत्र जपते जपते दिन रात उसको तो ज्यों ज्यों दिन घटने लगे, चिंता बढ़ने लगे, हर समय केवल केवल यही जप करने लगे। और सात दिन में कोई भी उसके पास आता, किसी से कड़वा नहीं बोलता है, किसी पर गुस्सा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से कुछ किसी तरह का कोई अपने व्यवहार में किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करता है, भगवान के नाम का जप करता है। सात दिन पूरे, सातवां दिन आया, सुबह सुबह नहा धो के गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुदेव आज तो बचाई हो। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने छह दिनों में क्या क्या किया। बोले गुरुदेव मुझे तो केवल कुछ याद नहीं रहा, बस आपकी एक ही बात याद रही कि सातवें दिन तुझे मरना है। ये बात मैंने आपकी याद रखी, जितना हो भगवान का नाम तो चलता है ना, उसके अतिरिक्त सात दिन में मैंने कोई किसी के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया, सब तरह से मैंने अपने व्यवहार को सबके साथ ठीक रखा। तो गुरुदेव कहते हैं यदि ऐसे ही तू सारी उम्र चलता रहा तो भगवान तुझे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ था कि भय भय भी न हो न प्रीति, मृत्यु का भय इसलिए दिया गया कि इस भय को, इस भय से हम भगवान का भजन करें, भय से हम गलत कर्म करने से अपने आप को रोक सके, ये भय हमारे लिए रक्षा कारक बन सके, हमारी रक्षा कराने वाला, बुराइयों से बचाने वाला बन सके, इसके लिए ये मृत्यु का भय है नारायण। इधर यक्ष भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भक्त जो कभी संसार में कितना बड़ा आश्चर्य है, रोज हम मरते हुए देखते हैं, रोज हम देखते हैं कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग चले गए हैं, कितने हमारे स्वजन जाने को तैयार कर

शिव का बोध हुआ, इसीलिए इन तीन देवताओं का बहुत बड़ा आदर है। सन्नु इंद्र, इंद्र का, वायु का और अग्नि का। कहा कि प्रथम प्रथम सबसे पहले पहले भगवान शिव के विषय में किसने जाना, बोले भगवान शिव के विषय में सबसे पहले जाना तो इन तीन देवताओं ने जाना, इसीलिए अग्नि का आदर है, इसीलिए वायु का आदर है। वायु रूप में भी भगवान शिव हैं, अग्नि के रूप में भी भगवान शिव हैं और इंद्र के रूप में भी भगवान शिव हैं। भगवान के शिव का ही स्वरूप है, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय, जिन्होंने अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण किया हुआ है। यक्ष के रूप में भगवान शिव, जिनके मस्तक पर जटा धारण किए हुए हैं, पिनाक भगवान शिव का त्रिशूल है जिन्होंने अपने हाथ में धारण किया हुआ है, ऐसे सनातन दिव्य देव भगवान दिगंबर जो निर्वस्त्र हैं, ऐसे भगवान शिव के यक्ष स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। ये पंचाक्षर मंत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय महेश्वराय, ये भगवान शिव जो नागों की माला को गले में धारण करने वाले हैं। ये पांच अक्षर भगवान शिव के हैं, इनमें से इनका महत्व ये है, य य य य पांच बार बोलो, एकाक्षरी मंत्र हो गया। इस नाम से भी आप स्मरण करें और उसके साथ साथ भगवान शिव के लिए व व व वम अमृतत्व है और शी शिकार भगवान शिव शी शब्द है, ये शक्ति मूल है और भगवान शिव जिनके लिए ये कहा गया है मंदार, ये बीजाक्षर हैं, एक एक अक्षर है म और न, ये अलग अलग संख्या के नाम से इनको गिना जाए तो संख्या के नाम पर भी इन अक्षरों से अमृत तत्व बनता है, रस तत्व बनता है, लक्ष्मी बीज मंत्र बनता है और अलग अलग करके भी इनका जप किया जा सकता है। इन पांचों शब्दों को एक साथ ले तो नमः शिवाय शब्द बनते हैं और नमः शिवाय शिव है, वेद है और वेद का उपदेश है, ऐसा समझकर श्रद्धा के साथ शिव मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से असंभव को भी संभव करने की यदि ताकत है तो भगवान के नाम में है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल के, मैंने आपको कहा था विधना ने यदि हमारे मस्तिष्क में कुछ कठोर लिख दिया है, उसको उस लेख में मेक करने की मिटाने की ताकत विधिना को तो नहीं है, ब्रह्मा को विधि को तो नहीं है, ब्रह्मा को तो नहीं है, पर भगवान के नाम को जरूर ये ताकत है कि विधाता के लिखे हुए लेख को भी बदल सकता है तो केवल भगवान का नाम बदल सकता है। इसलिए ऐसा पवित्र नाम है भगवान शिव का और इस शिव मंत्र को हृदय में धारण करना चाहिए और निष्कपट हो करके और उसके साथ साथ शिव मंत्र जपते हुए ये ध्यान रहे नारायण कि शिव ही हरि है और हरि ही शिव है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे संप्रदायक में तो कैसे हम ये भगवान का नाम लें, अन्याश्रय हो जाएगा, अर्थात ये अन्याश्रय नहीं है, हरि हर में कभी भेद नहीं समझना चाहिए, ये तो एक ही है। जैसे प्रणव अक्षर में अ उ म, जब तक ये अकार मकार उकार नहीं मिलेगा तो प्राणव नहीं बनता, एक अक्षर नहीं बनता। उसी तरह से याद रहे सृष्टि में ये तीन देव जब तक नहीं मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये सृष्टि का कार्य नहीं चलता, उत्पत्ति स्थिति लय के करने के लिए ये प्रधान रूप से तीन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही शिव है।

शिव का मतलब केवल शिव, महेश ही शिव है ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मा भी शिव है, विष्णु भी शिव है और शंकर भी शिव है। शिव ब्रह्मा को भी कह सकते हैं, शिव विष्णु को भी कह सकते हैं, शिव शंकर को भी कह सकते हैं। इसलिए शिव रूप वो रूप है जो सब देव का बन सकता, हो सकता है। शिव रूप सर्व देवमय है, इसलिए सर्व देवमय समस्त देवताओं का जो एक रूप है वो कौन सा रूप है, बोले वो शिव रूप है। वो उसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार न होते हुए भी यादृश्य भावना, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उसको वो रूप दिखाई देता है। शिव को किसी को ब्रह्मा के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को शंकर के रूप में दिखाई देते हैं। यादृश्य भावना, जैसा जिसका भाव है उनको वैसा ही दृश्य उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। इसलिए शिव सर्वदेव है और सबके जन जन के मन मन में रमने वाले आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई लिंग नहीं होता। वह न स्त्री है न शिव, न स्त्री है न पुरुष है, अर्थात उसका कोई लिंग नहीं है। वो लिंगातीत होने पर, लिंग से परे होते हुए भी वो सर्व लिंगों में, वो स्त्रीलिंग भी है, वो पुलिंग भी है, वो वृद्ध भी है, वो जवान भी है, वो बालक भी है, वो बटुक रूप में भी है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और महान से महत्तर में है। वो स्थान वायु भी है, जंगम भी है, वो चर में भी है, वो अचर में भी है, वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है। इसीलिए कहते हैं आकाशे तारका लिंगम पाताले च हटकेश्वरा मृत लोगे महंकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। भगवान शिव आकाश में भी है, पाताल में भी है और इस मृत लोग में महंकाल के रूप में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। कहाँ शिव नहीं है, किसमें शिव नहीं है, अर्थात हम सब यहाँ शिव बैठे हैं या अशिव बैठे हैं? हम अपनी उपस्थिति को शिव मानते हैं या अशिव मानते हैं? है ना, अशिव तो कोई नहीं मानता ना। जिसमें जिसे अशिव मानते हैं उसे हम कहाँ छोड़ के आते हैं, कंधे में रख के उसे कहते हैं राम राम सत्य है। ये बात तब कहते हैं उसको कि जब वो सुनने के लायक नहीं होता। यदि वो सुनने लायक जब था तभी उसे ये कह दिया होता, समझा दिया होता, तो शायद उसका भला हो जाता। और उस समय भी वो नहीं कहता है जो उसे छोड़ने वाले होते हैं, वो कहते हैं। इसलिए नारायण ये जो सत्य है, इस सत्य का नाम ही शिव है। इसलिए शिव अपने को समझो, अपने को पहचानो और अपने को जानो। मेरा इस शिवाक्षर अर्थात इस ओम नमः शिवाय का विषय लेने का मात्र उद्देश्य इतना ही था, शिव अपने को जानो, अपने को मानो, अपने को पहचानो और अपने को समझो कि वो शिव तुम ही हो। जो सचराचर की अखंड व्याप्त सत्ता है वो कोई तुमसे अलग नहीं हो, तुम ही है। ऐसे अपने मंगलमय पावनम पावनानाम मंगलम मंगलानाम, शुभ में शुभ, मंगल में मंगल, पावन में पावन, वो कोई नहीं है, वो तुम हो। और उस नाम का आश्रय लेकर अपने को पवित्र कर लो। आप हाथ में जल लेते ना, पंडित आपको मंत्र दे ओम अपवित्रो वा पवित्रो वा पवित्रो, अपवित्र को पवित्र भगवान का नाम लेकर करते हो, तो ये मंगलमय नाम यदि जीवन में समा जाए, आ जाए, नाम के साथ साक्षात्कार हो जाए, तो जीवन में पवित्रता आ जाएगी, आपका जीवन पवित्र और महान बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यही कहना चाहती थी
कि सच ते तो केवल शिव है, आत्मा है, और उस शिव को ही हमें बार बार नमन करना है। नमः शिवाय, हम शिव को नमन करते हैं, हम शिव को स्वीकार करते हैं। अर्थात नमः शिवाय का मतलब यही है कि नमः नमे इति, मैं नहीं, मैं उस शिव को नमन करता हूँ। कौन से शिव को? जो चर और अचर में व्याप्त है, जो मेरे भीतर विद्यमान है, मैं उस शिव को नमन करता हूँ। नमन करने का मतलब उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, शिव की सत्ता को स्वीकार कर लेना। आपका मन माने बार बार मन को इस बात के लिए तैयार करना है कि वो शिव की सत्ता को स्वीकार करे। हम सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, हमने स्वीकार किया है ये प्रकृति के असत्य को, और इस असत्य का जो सार है, सत्य है, वो शिव है, सनातन है। और उस शिव सनातन को पहचान कर जगत में रहो, पानी पियो, यक्ष ने कहा पानी पियो, पर मेरे प्रश्न का उत्तर देकर जगत में रहो, जगत को पहचान कर। बात केवल इतनी है, आपको कोई नहीं रोकता है, आप व्यवहार करें। आपका जैसा व्यवहार चल रहा है वैसा व्यवहार चले, कोई हर्ज वाली बात नहीं। आप भले ही संसार में रहें, संसार को छोड़कर आपको कहीं जाना भी नहीं है, परंतु बात केवल इतनी सी है कि संसार में रहो, संसार को पहचान कर। और पहचानने वाली बात ऐसी है कि आप हर जगह पहचान कर कपड़ा खरीदना चाहते हैं, पहचान कर आभूषण खरीदना चाहते हैं, पहचान कर औषधि खरीदना चाहते हैं, पहचान कर पुस्तक खरीदना चाहते हैं, पहचान कर घर का सामान खरीदना चाहते हैं। हर जगह पहले पहचानते हो और फिर उसे प्राप्त करते हो, फिर उसे पाना चाहते हो, पर संसार को ही पहचाने बिना इसमें क्यों रहना चाहते हो? संसार में रहो, संसार को पहचान कर। संसार की पहचान किस कैसे पहचाने? संसार जिस संसार को हमने अपनी पहचान समझी हुई है, ये संसार मेरा है, इसे जो अपने रूप में पहचान रहे, इस संसार की पहचान शिव के रूप में कर लो, फिर संसार में रहो, तो ये संसार कभी आपके लिए अशुभ अकल्याणकारी नहीं हो सकता, ये सदैव शुभ और कल्याणकारी ही होगा। इस संसार में रहना आपका फिर कल्याणकारी होगा, यही केवल मात्र उद्देश्य था। और इन्हीं शब्दों के साथ बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप लोगों ने सुना, मुझे विश्वास है कि निश्चय रूप से आप भगवान शिव के इस मंत्र का स्मरण करेंगे। मननात त्रायते मंत्र, अर्थात जिससे आपके मन को मनन करने की ताकत मिले, आपके मनन को बल मिले, शक्ति मिले, उसका नाम है मंत्र। मनन में जिसकी ताकत मिलती है, मननात त्रायते इति मंत्र, उसी को मंत्र कहते हैं। और एक महात्मा अपनी परिभाषा करते थे, मन के अनंतर, मन के भीतर जो घुस जाए उसी का नाम मंत्र है। अर्थात मंत्रमयो देवा, भगवान कैसा है? बोले जैसा आपका मंत्र है वैसा देव है। मंत्र ही देवता का शरीर है, मंत्रमयो देवा। देवता कैसा है किसी ने नहीं देखा, जो कुछ आप तस्वीर में देखते हैं, फोटो देखते हैं, ये फोटो किसने देखा? बोले ये तो आर्टिस्ट ने अपने भीतर देखा और वैसा बताया। परंतु शिव को किसने देखा? बोले इस शिव मंत्र को, मंत्र का दर्शन किसने किया? ऋषि ने किया। और मननात, और उससे उस मंत्र का उन्होंने मनन किया, और मंत्र का देवता जागृत हुआ, और मंत्र के देवता प्रसन्न होकर, प्रकट होकर के ताकत दी। क्या ताकत दी? वंशियों में श्रेष्ठ करने की ताकत दे दी वशिष्ठ को,
अर्थात सारे वंश में श्रेष्ठ हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसी ताकत मिली कि वशिष्ठ माने वो अत्यंत वरिष्ठ हो गए, महान हो गए। मुनि अगस्त को ताकत दे दी कि 7 समुद्र को अंजलि में भरकर पी गए और लघु शंका करके छोड़ दिए, ये ताकत उन्हें दे दी। इतना ही नहीं, गौतम ऋषि जैसे महामुनि को ब्रह्म हत्या आदि गौ हत्या आदि का दोष आरोपित कर देने पर इस अपवाद और को दूर करने की ताकत उन्हें शिव के नाम से मिल गई, जिसने भी इस मंत्र के साथ साक्षात्कार किया, इस मंत्र की शक्ति को जागृत किया, उन्होंने जीवन में असंभव को संभव कर दिया। विश्वामित्र जैसे ने नई सृष्टि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य उनको मिल गई, तो क्या इस मंत्र से हमारे दुख दरिद्र अज्ञान को हम दूर नहीं कर सकते? ये हमारी दरिद्रता दीनता हीनता दुर्बलता दुख हम जो बने हुए तभी तक है जब तक ये नाम हमारे पास नहीं है। इस नामाश्रय को लेकर हम अपने दुख अज्ञान दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ प्रसन्न आनंदमय हम जीवन जी सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य इस नाम में है, उसी का आश्रय ले, वही हमारा परम कल्याण है। और इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप लोगों के लिए भगवान के चरणों में शुभकामना करते हुए 8-9 दिन आज 9वां दिन है, बड़े प्रेम से आप लोगों ने मुझे झीला। सुनना बड़ा कठिन काम है नारा, सुनाना बड़ा आसान होता है, इस बात का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। कभी कभी देखो, अपने मन का रुचिकर वक्ता हो तो उसे सुनने में आनंद आता है, और कभी कभी वक्ता थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो अपने को सुनना बहुत वो होता है, क्योंकि सुनने में बहुत जोर लगाना पड़ता है और बोलने में तो बटन दबाओ अंदर का भरा हुआ टेप बजने लगता है, अंदर का भाव एक के बाद एक स्वतः आने लगता है। ये मेरा अनुभव है, हा? ये आज से नहीं, बचपन से, कि भीतर से निकलता है और जब बाहर से सुनो तो कुछ अंदर डालना पड़ता तो भारीपन आने लगता है। तो मेरे भार को आपने 9 दिन तक झेला, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में सचमुच आप लोग साधुवाद देने के अधिकारी हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ महात्माओं को, वक्ताओं को, श्रोताओं का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये श्रोता बिचारे इतने सरल होते हैं कि महात्मा कहते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, और महात्माओं को दोबारा दोबारा सुनाने का मौका मिलता है। जितना प्रवचन प्रेमपुरी में होता है आप लोग सुनते हैं, वो सब आपको याद रहे, तो मैं समझती हूँ कि महात्माओं को सुनाने के लिए कोई बात बाकी बचेगी ही नहीं। क्यों क्यों नहीं बचेगी? बातें तो वही होती हैं, सत्य तो एक ही है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती। कहने के ढंग, शब्दों का प्रस्तुतिकरण अलग हो सकता है पर सत्य अलग नहीं होता, सत्य तो एक है। इसलिए हर वक्ता की, हर महात्मा की कहने की प्रस्तुतिकरण सबका अलग अलग है। कौन कितने सुंदर शब्दों से सजाकर अपनी बात को आपके सामने परोसता है, ये हर वक्ता की अपनी कला है, विधा है। ये कला भगवान ने किसी को बहुत बढ़िया दे रखी है, किसी को कैसी दे रखी है वो बात अलग है, पर सबका भाव, सबका इशारा, सबका संकेत तो एक के ही ओर रहता है, एक ही भगवान की ओर रहता है। इसलिए आप सब लोगों ने मुझे सहा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ।

0: नारायण नारायण नारायण नारायण। आइए हम सब मिलकर पूज्य मां के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। सारा प्रेम पुरी का वातावरण शिवमय हो रहा है, जिसे देखिए नमः शिवाय नमः शिवाय। माताजी ने नमः शिवाय मंत्र की इतनी व्यापक इतनी सुंदर व्याख्या की है जो आज तक हमने नहीं सुनी। भगवान शंकर के महत्व को, भगवान शिव के महत्व को, उनकी व्यापकता को, सत्यम शिवम सुंदरम, इतने वृहद रूप से माताजी ने हमें समझाया है। उस बात को यदि हम हृदयंगम कर लें, हृदय में उतार लें, तो हमारा जीवन सही माने में सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। हम सब अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण केवल भगवान शिव के नाम में है। हम माताजी को एक विश्वास दिलाएं कि हम कुछ सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा से हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम रोजाना एक माला नमः शिवाय की अवश्य फेरेंगे। यही आपसे कहें। मैं और अधिक कुछ नहीं कहकर एक बात कहना चाहता हूं कि पुराने जमाने में राजस्थान में जब योद्धा रणभूमि में जाते थे तो वो कहा करते थे, हर हर महादेव। क्यों कहते थे? कि भगवान के नाम में शक्ति है, हम भी ये कहें हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से माता जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि पुष्पों के द्वारा समर्पित करता हूं।
1: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति ओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं।

0: முக்ஷுர்வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம். நமாமி பகவத் பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம். அஸ்ய ஹம் லோக் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ர கா ஆரம்ப கரெங்கே. கியோகி குரு பூர்ணிமா ஒரு ஆனந்த ஜெயந்தி. பரம் பூஜ்ய பிரதஸ்மரணி மாராஷ்ரீ கா ஜன்மதின் கல் ஹை. ஆர் குரு பூர்ணிமா கை அபி 3 தாரீக் கோ. தோ இஸ்கே பீச் மே யஹி சோச்சா கி குரு கி ஸ்துதி, குரு தத்துவ கி பஹச்சான், யஹி சப்ஸே உத்தம் விஷய ரஹேகா. பகவான் சங்கராச்சாரிய த்வாரா கை ஸ்தோத்ர கி ரச்சனா ஹை, பர் சப் ஸ்தோத்ர மே சப்ஸே கம்பீர் உத்கிருஷ்ட ஆர் பிரச்சலித் ஜிஸ்கி பஹத் கியாதி ஹை ஆர் ஜிஸ்கோ லோக் படே பிரேம் சே மங்களாச்சரண கே ரூப் மே பி நித்ய பிரயோக் கர்த்தே ஹை, ஐசா ஹை யே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ர. ஆப் லோக் பிராதஸ்மரணீய மஹாராஜ் ஸ்ரீ கோ ரோஜ் சுன்தே ஹை. आपने देखा होगा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इस श्लोक का महाराज श्री ने जीवन भर मंगलाचरण किया. ये कोई सामान्य बात नहीं है. इतने बड़े विद्वान फिर भी ये दक्षिणामूर्ति की स्तुति हर रोज करते थे महाराज श्री. इसलिए भी जो लोग यहां आते उनके लिए भी ऐसा क्या महाराज श्री ने भी इस श्लोक में देखा जो उन्होंने बड़े प्रेम से मंगलाचरण के रूप में पसंद किया. ये सब बात इकट्ठी करके हमें इस श्लोक का आरंभ करते हैं. हमने एक पुस्तक महाराज श्री की छपवाई थी जिसमें महाराज श्री के द्वारा ये 3 श्लोक का अर्थ लिखवाया गया था. अभी मेरे पास ही नहीं मिल रही, और को तो क्या दो पर है, अगर मैं ढूंढवाऊंगा मेरे पुस्तक यहां वहां पड़े मिल जाएंगे. मेरे मन में था सबको आप लोग को दूं तो एक फायदा होगा देखने के लिए. ठीक है, अब इस स्तोत्र की विशेषता यह है कि कोई भी स्तुति होती है उसमें किसी के महिमा का वर्णन किया जाता है, आप ऐसे हैं ऐसे ऐसे. पर इस स्तोत्र में समग्र वेदांत का जो रहस्य है, ब्रह्म आत्म तत्व है, उसी का अच्छी भांति निरूपण किया गया है. इसलिए भी यह स्तोत्र अध्ययन करने योग्य है. अब एक बात और देखिए, आप परंपरा से प्राप्त इस स्तोत्र के पूर्व 5 या 10 श्लोक इस स्तोत्र की स्तुति के लिए, स्तोत्र स्तुति करता है और स्तुति की भी स्तुति करने के लिए और दूसरा स्तोत्र है, उसको कहते हैं ध्यान श्लोक. अब आप इसको सुनिए, मेरे पास जेरोक्स नहीं कराया, कल हो जाएगा तो दे देंगे आपके. मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिकणे आवृतम ब्रह्म निष्ठ आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम முதித வதனம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி மீடே. ஹோகயா பிரதம ஸ்லோக. श्री दक्षिणामूर्ति ईडे। मैं भगवान सांब सदाशिव दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करता हूं, स्तुति करता हूं, भजता हूं। इतना ही है एक क्रियापद दक्षिणामूर्ति मीडे। बाद में पूरे श्लोक में ये दक्षिणामूर्ति के सब विशेषण है और कुछ नहीं है। किस प्रकार के दक्षिणामूर्ति उसका वर्णन किया है तो कहते हैं व्याख्यानम मौन व्याख्या प्रगटिते पर ब्रह्म तत्वम युवानम। व्याख्यानम करते हैं, कैसा उपदेश करते हैं, प्रकट करते हैं वेदांत के रहस्य को, किसके द्वारा? मौन के द्वारा। मौन व्याख्या तो प्रगटित कर पर प्रगटित, ये व्याख्यान के द्वारा जो छुपा हुआ अत्यंत रहस्यमय जो वेदांत का उपदेश है उसको प्रकट करते हैं। उपनिषद को रहस्य विद्या कहा है। गीता में भी नौवें अध्याय में राज विद्या राजकुह्यम पवित्रमिह विद्यते, ये विद्या में राज विद्या है, स्वप्रकाश है और विद्या में रॉयल विद्या भी है। और दूसरा लक्षण लगा दिया साथ में गुह्यम। गुह्यम माने जो छुपा के रखा गया है, सीक्रेट इंग्लिश में कहते हैं। एक बात होती है कोई भी रहस्य हो किसी के जीवन के विषय में, वो न सुने तब तक ही अच्छा है। जब सुनते हैं सच्चे के झूठे किसी को मालूम नहीं है, पर अगर मालूम पड़ गया तो फिर मन में ग्लानि होती है, अरे राम राम ये मिनिस्टर लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना पैसा विदेश में रखा है, हमने करोड़ रुपया देखा है नहीं, ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए रखते हैं, इतने हजार इतने लाख करोड़, ये क्या बात है। तो कभी कभी तो होता है कि रहस्य न खुले वही अच्छा है। आपके शरीर के विषय में भी बहुत रहस्य है, वो तो जब जांच होती है पैथोलॉजिकल खून की तब वो रहस्य खुलता है, वो भी अच्छा नहीं है देखने में, डायबिटीज है, ये है, वो है, कोलेस्ट्रॉल है। तो मैं तो मानता हूं हमेशा कि कोई कहते महाराज जी मैं आपको रहस्य बताने जा रहा हूं, मैंने कहा रहस्य को रहस्य ही रहने दो, क्योंकि जानने से कोई बड़ा आनंद होता नहीं है, जो थोड़ी भी श्रद्धा है वो टूट जाएगी, जो थोड़ा भी भाव बना है वो टूट जाएगा। इसलिए रहस्य को रहस्य रहने देना अच्छा है। तो महाराज भगवान दक्षिणामूर्ति ये रहस्य का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? ऐसे रहने देना तो प्रकटिति पर ये रहस्य की विशेषता है। क्या है? ये ज्ञेय है और अशुभा संसारात मुच्यते, अशुभ संसार से मुक्ति देने वाला रहस्य है। और इसको जानने के बाद और कुछ जानना रहता नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम टॉप सीक्रेट। अब एक दूसरा है रहस्य की बात, मैं आपको रहस्य बता दूं, बाद में वो रहस्य नहीं रहेगा, है कि नहीं? रहस्य रहस्य कब तक रहता है? जब तक न बताओ तब तक रहस्य है। पर ये ब्रह्म तत्व का रहस्य ऐसा है कि बताने पर भी रहस्य ही रहता है, ऑन टेलिंग ऑल्सो। इतनी अच्छी तरह से उनको निरूपण किया गया तो भी उनकी समझ में आया नहीं। ये महाभारत में कई कूट श्लोक है। कूट श्लोक माने कि जो समझना रहस्य है, विदुर जी बोलते हैं, व्यास जी कहते हैं, बड़ी सभा में विदुर जी बोल देंगे, सब लोग सुनेंगे, पर युधिष्ठिर महाराज समझ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? कूट श्लोक। इसी प्रकार से ये जो रहस्य है वो प्रगटिति परब्रह्म तत्वम युवानम्। प्रगटिति, जो छुपा हुआ रहस्य था ब्रह्म विद्या का, उनको अच्छी बली बाति जिज्ञासु के सामने प्रकट करते हैं। अधिकारी है तो समझ जाएगा, और जो समझ जाएगा वो अधिकारी है। दोनों ओर से कौन सा रहस्य प्रकट करते हैं? परम ब्रह्म। परम च ब्रह्म च ब्रह्मं च परम ब्रह्म। जो परम है मानी देश काल और गुण से अतीत है, और जो व्यापक है, अनंत है, वो परब्रह्म का जो तत्व है, स्वरूप है, उसको प्रकट करते हैं। कौन कौन प्रकट करते हैं? दक्षिणामूर्ति। कैसे प्रकट करते हैं? अभी एक और रहस्य, मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम्। मौन व्याख्या, मौन व्याख्या, मौन व्याख्या शब्द कर देखिए आप। यहां आप देखेंगे प्राय लोग गड़बड़ा जाते हैं और बड़ा प्रवचन करेंगे, मौन ही व्याख्या है, मौन में ही व्याख्यान हुआ। इसका अर्थ क्या हो गया? वो तो समझ, जो बोलने वाला तो समझता नहीं है, और हमको समझाने का प्रयत्न करता है जो समझना मुश्किल है। अगर मैं कहूं आज मैं मौन हूं और फिर व्याख्यान हो रहा है तो क्या होगा? एक घंटा में चुपचाप बैठा रहूंगा। मौन व्याख्यानम उपनिषद है, मानी एक पेज, एक पन्ना उपनिषद का कुछ छपा हुआ नहीं होगा। मौन ईशावास्य वन पेज, मुंडक उपनिषद दो पेज, ऐसे। व्हाट इज मौनम? मौन का अर्थ होता है वांग निरोध। जब हम एक शब्द का भी उच्चारण न करें, वांग निरोध हो जाए, उसका नाम है तय मौनम। आज ये मौन धारण किया है। और दूसरा है व्याख्यानम, जिसमें अच्छी बाली बली बाती विषय को समझाया जाता है। गुजराती में सरस शब्द है, छणावट करवामां आवे, विषय का अच्छी बाली निरूपण किया जाता है, उसको कहते हैं व्याख्यानों। क्या हमें प्रकट करना है? ख्याति। अब आप देखिए, मौन और व्याख्यान शब्द का अर्थ बारंबार आएगा स्तुति में, इसलिए चित्रम वटतरोर मूले वृत्ता शिष्य गुरोर युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। गुरु ने मौन व्याख्यान किया और शिष्य के सब संशय दूर हो गए। संस्कृत में एक कहने का होता है वदतो व्यागातः। वदतो व्यागात का अर्थ होता है जब हम कह रहे हैं तब भी विरोध हो रहा है, बोलने में भी विरुद्ध दिखता है। मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, मैं बोल के कहता हूं मम मुखे जिह्वा नास्ति। आपको ये जोक मालूम होगा, एक अंधा भीख मांगता था। एक भाई हर रोज एक रुपया देते थे। एक दिन वो दिखा नहीं, एक दूसरा आदमी वहां खड़ा था बोर्ड लगा के कि मैं गूंगा हूं मुझे पैसा दीजिए। गुंगवाने बोलता नहीं हूं। तो उन्होंने पूछा एक रुपया देते हुए नए आदमी को कि वो अंधा कहां गया है। तो गूंगा बोला कि वो फिल्म देखने गया है। डबल गूंगा बोला और अंधा पिक्चर देखने गया है। देखने गया है, सुनने नहीं गया है। सुनने को भी जा सकता है। तो डबल। तो गूंगा होगा सो बोलेगा नहीं, अंधा होगा सो देखेगा नहीं, जो मौन होगा वो प्रवचन करेगा नहीं। हमको मौनी बाबा बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण क्या है मालूम है? इनको कितना मालूम है नहीं मालूम ही, कभी मालूम ही नहीं पड़ता है ना। बहुत फायदा है, मौन ही रहो, चुपचाप बैठे रहो, आपका सब आदर करेंगे। मौन सर्वअर्थ साधकम। आप चुप लगा दीजिए बहुत काम होगा। घर में जाके खास कोई बड़ी गड़बड़ हो रही, चुप रही है तो बहुत काम हो जाएगा। मौनम सर्वअर्थ साधकम। ये क्या बात है मौनम और व्याख्यानम, और वो भी स्तुति के रूप में है। यहां समझना है कि समग्र वेदांत का जो विषय जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, जीवेश्वर यो हो ऐक्यम, आपके विषय में जो रहस्य है, आप जो अपने को मान रहे हैं वो नहीं है, आप जो है वो आपको कभी भी मालूम ही नहीं है। महाराज श्री एक दिन हमको कहा, खंडन जी महाराज ने, मैं तुझे जो दिख रहा हूं वह मैं नहीं हूं, मैं तुझे जो समझा रहा हूं वो मैं हूं। दोनों में फर्क है। आप अपने विषय में जो मान्यता धारण किए हुए हैं कि मैं छोटा मोटा आदमी, इतने वजन वाला, इतनी उम्र वाला, ये सब गलत पुरवार होने वाला है। ठीक है, आइए। तो रहस्य जो है अपने आपा के विषय में, जो ब्रह्म स्वरूप हमारा है, वो इस समय हमारे लिए अज्ञात है, हम जानते नहीं है। अब जो सद्गुरु है वो उस ब्रह्म स्वरूप के बोध के लिए, अवबोध के लिए, प्रबोध के लिए शास्त्र प्रमाण के द्वारा हमें उपदेश करते हैं, करता है। अब आप थोड़ा और विचार करिए। भगवान ने हमें पांच ज्ञानेंद्रिय दी है और ये पांचों ज्ञानेंद्रिया के साथ जब मन रहता है और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो अगर सामने है तो हमको ये पांचों विषयों का ज्ञान मन में होता है। रूप का ज्ञान, रंग का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, संगीत का ज्ञान होता रहता है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम। अक्षम यानी इंद्रिय चक्षु, हर एक इंद्रिय से जो विषय क्रिया जाता है, इंद्रियों का विषय बनता है, जिसको हम यह के रूप में जान सकते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब कहा गया है ज्येष्ठ प्रमाणम, प्रत्यक्षम ज्येष्ठ प्रमाणम। सब प्रमाणों में ये सबसे मुख्य प्रमाण है, क्योंकि अनुमान भी किया जाएगा वो भी प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष जनक होता है। आपने देखा धुआं आ रहा है पर्वत से, तो आप अनुमान करेंगे कि नीचे अग्नि है और जाके देखेंगे कि वहां अग्नि मिल भी जाएगा। तो धुआं का जो अनुमान है और जो उसका फल है वो अनुमान मूलक, जो प्रत्यक्ष मूलक, क्योंकि पहले हमने अग्नि और धुआं को देखा है प्रत्यक्ष मूलक है, और बाद में जाएंगे तो प्रत्यक्ष जनक भी हो जाएगा, अग्नि दिखेगा हमको। आवाज देख के हम निकल जाते हैं, रिक्शा का आवाज है, रिक्शा को नहीं देखते हैं, सुनते हैं आवाज और अनुमान करते हैं क्या रिक्शा, और पीछे घूम के देखते हैं रिक्शा। घंटी बजाते हैं कौन, मैं कौन, मैं समझ गए साहब आ गए घर में, आवाज से पहचान जाते हैं कि अपने पति परमेश्वर आए, दरवाजा खोलने पे वही मिल जाते हैं। तो प्रत्यक्ष मूलक होता है अनुमान, और जितने भी है उपलब्धि अर्थापत्ति उपमान, ये सब प्रमाण शब्द, ये सब प्रमाण है। मुख्य प्रमाण कौन सा है, प्रत्यक्ष है। अब आप देखिए प्रत्यक्ष सबका बाद में हो ही जाता है। मैं आपको फ्लावर वैली की बात करो, हिमालय में जब बहुत फूल खिलते हैं अमुक सीजन में, मैं आपको शब्द से सुना सकता हूं, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको कहूं ये चीज कैसी दिखती है, उसका भी आपको दृष्टांत के द्वारा अनुमान में करा सकता हूं, उपमा देके। बहुत बार कहते हैं ये चीज ऐसी दिखती है आप ले आओ, ये आदमी ऐसा दिखता है आप उनको जाके बात करो, उनका नाम माधु भाई है, मालूम पड़ जाएगा। चीज का न होना भी, कभी कभी गले में माला नहीं है ये कब मालूम पड़ता है, माला है और इसका गले में अभाव है। तो अनुमान उपमान अर्थापत्ति माने, बहुत पानी नदी में आ गया है तो आगे वर्षा हुई होगी, यह हो गया क्या अर्थापत्ति, अन्यथा अनुपपत्तो अर्थापत्ति। यहां तो वर्षा नहीं गिरी है, इतना पानी आएगा कैसे, या तो बांध टूट गया है, टहरी बांध टूट गया है, या तो वर्षा ज्यादा हुई है, इसको क्या कहते हैं अर्थापत्ति। ये दिवस दिन में भोजन नहीं करता है पर वजन बढ़ता जाता है क्या, रात को खाता है डब्बा खोल खोल के, और गुजरा यहां तो बम्बे में बहुत अच्छा, खाउदरा गली में जाता है रात को, खाउदरा गली से ना, खाउदरा गली में खाउदरा हो जाए दरअसल। तो ये सब अनुमान प्रत्यक्ष मूलक है और प्रत्यक्ष जनक है, आखिर फलक हो जाएगा, प्रत्यक्ष फलक हो जाएगा। तो आपका और हमारा जितना भी ज्ञान है, संबित जिसको कहते हैं, जितनी समझदारी है, ये प्रत्यक्ष से ही प्रकट हुई है। कुछ चीज ऐसी है जिसका कभी प्रत्यक्षीकरण हो नहीं सकता, न कभी यह के रूप में वो दिखता है और फिर भी है, है पर दिखता नहीं है। इसलिए छह प्रमाण जो मेरे पास है, मैं जान लूं सीधे, उसका अनुमान करूं, उसकी उपमा दो, ये सब नहीं हो सकता है। ऐसा जो वस्तु है इसको कहते हैं, ये हमारे जाने हुए प्रमाण से अगोचर है। अगोचर है माने उसके द्वारा उसको जान नहीं सकते हैं। पर एक बात यह है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अशुभात् संसारात् मोक्षसे, अशुभ संसार से तो मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञेय तत्व की मैं आपको चर्चा सुनाता हूं। तो ऐसा भी है जो प्रमाण जो हमें ज्ञात है प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ज्ञात नहीं है, फिर भी जिसका ज्ञान प्राप्त करना है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Kuch samajh mein nahi aa raha hai. Kuch khalipan lag raha hai. ये जो भी कुछ अनुभूति साहब आपको हो रही है ना अभी इसी क्षण, उसके सुनने में वही वो परमात्मा की अनुभूति है। ये परमात्मा, ये अनावरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। परमात्मा जो ढका हुआ है भीतर, जो स्वात्मा अहम अहमतया जो स्फुरण हो रहा है, हमारी जो ऊपर की जो परत है रूप रस गंध की, हाँ, ये सब वासनाओं की, ये सब विचार की, ये सब बुद्धि की, ये अहंकार की, ओहो ये परत थोड़ी हट गई है साहब। और थोड़ी जो हट गई ना, उससे ये आश्चर्य हो गया है। हम ऐसे देखिए, अभी आप, मैं आपके में से किसी को भी पूछो आप क्या विचार कर रहे हैं अभी। अगर आप अटेंशन से सुन रहे हैं तो आप क्या विचार कर रहे हैं, आपको क्या विचार आ रहा है अभी? अभी ये क्षण आपको क्या विचार आ रहा है? ये क्षण क्या, ये क्या बोले? कुछ नहीं। ओहो हो, और एक क्षण भी विचार के बिना हम रह सकते हैं? अरे भाई, विचार के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए तो यहाँ आते हैं कि ये विचार से कब छुटकारा हो। ये हमारा मन हमें नहीं छोड़ता है। और देखिए ये क्या जादू हो गया, सबने ऐसा ऐसा किया कि भाई कुछ विचार नहीं आ रहा है। ओहो, तो इससे बड़ा आनंद क्या है कि आपको विचार नहीं आ रहा? क्योंकि विचार नाम और रूप के बिना विचार आ ही नहीं सकता। विचार आप वही चीज के कर सकते हैं जिसका नाम है, जिसका रूप है। और जितने जितने नाम रूपात्मक जो है, वो जन्मे हुए हैं, वो मरण धर्मा है, वो संसार का कारण है। और आपने कहा हमें अभी कुछ नहीं विचार आ रहा, उसका मतलब ये है कि ये ओम शब्द उपनिषद अभी शुरू भी नहीं हुआ, उपनिषद की बात हम कर रहे हैं और इसने हमें रोक दिया है। ओहो, इससे बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ा परम आनंद क्या हो सकता है कि कोई मुझे रोक ले, ओहो मेरी इच्छाओं को रोक ले, मेरी वासना को रोक ले, मुझे पूरा पूरा बंद कर दे। और ये जो पूरा बंद हो जाने का जो आनंद है, अभी जो आपको जो थोड़ा सुकून मिल रहा है, जो हाश हो रहा है, जो आश्चर्य हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो भी आश्चर्य हो रहा है, वो आश्चर्य को पकड़ लीजिए। समझ में आया और नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, जो हो गया उसे आप पकड़ लीजिए। तो वो जो पकड़ने का जो आनंद है, वही ये परमात्मा है। आपको बताना क्या है कि ये यात्रा हमें सबको करनी है। ये अनुभव परमात्मा का जब भी होगा, जो भी शरीर मन और बुद्धि की स्थिति में होगा, जो भी देश या काल में होगा, आपके भीतर ही होगा, इतना ही आपको बताना है। ये तो स्वाद चख लिया, थोड़ा अनावरण हो गया तो भीतर जो ये शांति, जो ये आश्चर्य, जो ये विचार न आना है, मात्र श्रवण, मात्र घर से यहाँ आके बैठने से इतना सब कुछ हो जाता है, जो परमात्मा के पीछे करोड़ों जन्म हो जाए तो भी तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। ओह, दूरदर्शन है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला ये परमात्मा अगर थोड़ा भी आपको चखने मिल जाए, यहाँ से आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, इतना ही विश्वास लेके जाएंगे कि जब भी मिलेगा मेरे भीतर वो है, बात खत्म हो गई, बात हो गई। फिर वो मिलते ही जाएगा, आप आश्चर्यचकित। और फिर ये तो एक क्षण के लिए आप आश्चर्य हो गए ना, और किसी के बताने पर हो गए। एक क्षण ऐसी आएगी जब ये आश्चर्य के सिवाय की एक भी घड़ी नहीं होगी आपकी, और वो क्षण की आप जस्ट कल्पना कीजिए, और वो आनंद में, हाँ, यत्स

यस्मिन्नित्य सुखाम्बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनम् मनीषा मम। शंकराचार्य जी कहते हैं, क्यों हो परमात्मा, आपके नाम आपके गुण सुनने पर, श्रवण करने पर, विचार करने पर वो जो आनंद आ रहा है वो तो कैसा है, एक समुद्र की जो बूंद है वो बूंद चखने पर जो पानी को जानने का आनंद आ रहा है, अगर वो समुद्र में ही मैं कूद जाऊं, मैं खुद वो बूंद जो है वो समुद्र में गिर जाए अगर, और वो पूरा समुद्र ही बन जाए, तो ब्रह्मैव न ब्रह्मविद, ब्रह्म को थोड़ा जाना तो इतना सारा आनंद हो गया, अगर मैं पूरा जान लूं, मैं ब्रह्म ही बन जाऊं, तो मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूंगा। वैसे आनंद जिसने भी प्राप्त किया है वो जो भी कुछ हो, चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम, वो चांडाल भी हो या कोई भी हो वो मेरा गुरु हो। और हे परमात्मा, शंकराचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे ऐसे ही चरणों में रखना जिसने ये परम प्रज्ञा को प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि उसने जो प्राप्त कर लिया है उसके संपर्क से ही मैं उसे प्राप्त कर सकूंगा, बाकी ये प्राप्तव्य नहीं है। अगर पानी की एक बूंद है तो उसको मैं पत्थर के साथ मिला दूं तो एकीकरण नहीं होगा, या पानी की जो बूंद है उसे मैं दूसरे पानी की बूंद से मिला दूं तो ही एकीकरण हो सकता है। अगर ये समुद्र की एक बूंद है और यहाँ से एक नदी की बूंद लेती हूँ पानी की और ये दोनों को एक करती हूँ तो अभी क्या हो गया, ये दो बूंद मिलके एक हो गई और वो क्या हो गई, वो समुद्र हो गए। पर एकीकरण कब हुआ, जब दोनों का प्रवाहित्व दोनों में जलत्व एक है, और इसीलिए श्रवण का महत्व है, किसी गुरु मुख से सुनने का महत्व ऐसे है क्योंकि जैसे हम है वैसे ही वो है, सब कुछ एक है, और जब उनका जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान से उसका एकीकरण हो गया, जब मैं सादा पानी लाती हूँ, एक ग्लास कटोरा पानी लाती हूँ समुद्र में डालने के लिए, तो वो पानी में समुद्र के क्या गुण है, भाई समुद्र के कोई भी गुण नहीं है, जलत्व के अलावा समुद्र का कोई भी गुण मीठे पानी में नहीं है, तो समुद्र बनने के लिए मीठे पानी को क्या करना पड़ेगा, समुद्र के गुण लाने पड़ेंगे, नमक डालना पड़ेगा, नहीं नहीं आपको नमक डालने की भी जरूरत नहीं, अरे ऑपोजिट गुण है, जो केमिकल ये पानी में है वो समुद्र में मिलने ही नहीं वाले हैं, तो भी चलेगा, भाई ये गांव का है तो भी चलेगा, हाँ ऐसा रंग का है तो भी चलेगा, जो जैसा जैसा उसका है, अरे भाई अच्छे पात्र में नहीं है, इसका पात्र तो खराब है।

मनन चिंतन कराओ, उसके पास निधि ध्यासन कराओ। बस समुद्र तक की यात्रा, गंतव्य जाना ही है, प्रस्थान ही। इसीलिए प्रस्थान शब्द बहुत सुंदर है। ऐसे ही प्रस्थान करना है। और जैसे कहा कि वापस आना नहीं होता है, वैसे ही वो एक गिलास जब पानी हम डाल देते हैं समुद्र में, अब वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। और आ भी सकेगा तो पूरे समुद्र के रूप में ही आएगा। हाँ, फिर वो अपना जो रूप जो लेके गए थे उससे हम वापस नहीं आ सकते। ये कुछ प्रस्थान हमारे जीवन का भी ऐसा ही है। एक बार भी श्रवण कर लिए ना, कोई भी श्रुति का श्रवण, कोई भी गुरु से अगर एक बार भी श्रवण कर लिया, तो वो आपके भीतर जो भी परिवर्तन लाते हैं ना, वो परमानेंट होता है। व्यवहार संबंधी जो भी परिवर्तन है ना, वो परमानेंट नहीं होता, इससे बार बार करना पड़ता है। आंखों में काजल लगा दिया, ये परिवर्तन हो गया, तो एक बार काजल लगाया तो परमानेंट आंखें ऐसी अच्छी दिखनी ही चाहिए, ये शेप दिखना ही चाहिए परमानेंट, नहीं, रोज लगाना पड़ता है। स्वाद एक बार ले लिया तो ले लिया, नहीं, जो अच्छा लगे वो स्वाद रोज लेना पड़ता है, तो ही हमें अच्छा लगता है। खाने के बाद किसी को होता है आदत, ये चाहिए खाने के बाद, कुछ कुछ मुंह में कुछ ऐसा चाहिए, वो टिपिकल स्वाद आपका होता ही है, भई ये रोज करना पड़ता है। व्यवहार संबंधी जितनी जितनी जो हमारी आदत है, उसे रोज पूर्ण करनी पड़ती है। और यहाँ एक बार हुआ हो हुआ, ये परिवर्तन आपके साथ परमानेंट जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे और ये जो परिवर्तन है ना, आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अब ये जो परिवर्तन है, अब ये जो श्रवण कर लिया, अब क्या होगा? अब आप जब भी भोग करेंगे, भोग तो होता ही रहेगा, प्रारब्धवशात वो विषय जो है, विषय का संपर्क आपके शरीर के साथ होना ही है, क्योंकि भोगायतनम इदम शरीरम। ऐसा मत सोचना कि ये जो भोग है ज्ञान होने के बाद बंद हो जाएंगे, विषय बंद हो जाएंगे। विषय कभी भी नहीं बंद होंगे, जब तक शरीर है विषय का बंद होना नामुमकिन है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अरे भाई, कोई मर जाए तो मर जाना यानी क्या? और इसीलिए ज्ञान होने के बाद कोई मरता नहीं है, ये इसी कारण। हम जिसे मरण कहते हैं, वो हकीकत में क्या है आप समझ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो प्रारब्धवशात भोग का आना है, वो इतना मैकेनिकल है, वो इतना मैथमेटिक्स वाला है कि उसके साथ आपका कोई निस्बत ही नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा। मृत्यु यानी क्या, इतना भी आप समझ लेंगे तो मृत्यु का डर तो चला जाएगा। और ये भोग जो आते रहते हैं, और भोग का नहीं आना होता है, वो भी आपको समझ में आएगा, तो उसके प्रति जो आपकी गति जो है वो रुक जाएगी। देखिए, हम सबको पता है कि गिने हुए संचित जो कर्म है, उसमें से सिलेक्टेड गिने हुए कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म जिसे कहते हैं, वो हम लेके आए हैं और चल रहा है, बराबर। इतना तो आप मानते हैं ना, 1,00,000 कर्म लेके आए, तो अब आप ही मुझे जवाब दीजिए कि ये शरीर जो है, 1,00,000 कर्म लेके हम आए हैं, तो शरीर कितने कर्म भुगतेगा? हाँ, 1,00,000, बराबर है। तो मृत्यु का हुआ साहब, ये 1,00,000 कर्म खत्म हो गए। अच्छा, 1,00,000 कर्म खत्म हो गए हमारे, तो फिर शरीर क्या होगा, फिर शरीर क्या भुगतेगा? तो प्रारब्ध कर्म का खत्म हो जाना ही मृत्यु है। अब मृत्यु अच्छा या बुरा, दुखदाई या सुखदाई, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इतना ही, इतना सिंपल। देखिए, ये शास्त्र जो है, ये क्यों पढ़ने चाहिए? हाँ, ये थोड़े थोड़े सिद्धांत आप समझ लेंगे ना, थोड़ी ये टिप्स ले लेंगे ना प्रैक्टिकल, तो जीवन सरल हो जाएगा, जीवन में एक हल्कापन आ जाएगा, एक खुशबू आ जाएगी, भारीपन नहीं लगेगा। प्रारब्ध कर्म खत्म हुआ तो अभी भोगायतनम इदम शरीरम, ये शरीर जो है वो तो माध्यम है, कारण है, तो अब उसका प्रयोजन नहीं रहेगा। उसका काम इतना ही है जितने कर्म, तो भाई कर्म खत्म हो गए, पाप या पुण्य, कोई भी कर्म खत्म हो गया तो ये एंड कर्म हो गया, 1,00,000वां कर्म हो गया, तो यहाँ ये शरीर अब क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इसलिए बंद होता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गया इसलिए अब क्या होगा, उसकी इच्छा होगा। देखिए, ये भ्रांति में से निकल जाइए, पिताजी की ये

0: थी वो इच्छा थी और वो चल बस है। नहीं बाबा, वो इच्छा की हुई थी, उसका प्रारब्ध नहीं बचा था, ध्यान रखिए। उन्होंने करोड़ इच्छा की, उससे क्या हुआ? अवगति कभी भी नहीं होती कोई जीव की। अकाल मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है, है करोड़ों में एक कोई अपवाद, पर अकाल मृत्यु जैसा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह सिद्धांत फिर जाएगा। फिर सिद्धांत क्या है? प्रारब्ध का कर्म खत्म हो गया और यहां शरीर चला गया। तो बस इतनी ही सरल ये बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान श्रवण करने के बाद जो विषय का आना आपके जीवन में है वो ये प्रारब्ध के वशात है। वो गिने हुए कर्म है, वो आते ही रहेंगे, शरीर के साथ संजोग होते ही रहेंगे। फिर क्या होगा? अगर आपने अपने आप को समुद्र जान लिया तो समुद्र में फिर कितने ही जो तरंगे हैं वो आएगी, बड़ी तरंग आएगी, छोटी तरंग आएगी। ये जो तरंग का आना जाना है, उठना है, गिरना है, वो होता ही रहेगा। बस ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक ये जो तरंगे हैं जीवन में वो आती ही रहेगी, जाती ही रहेगी। उससे समुद्र विक्षिप्त जैसे नहीं होता है, वैसे ही मैं विक्षिप्त नहीं होती हूँ जब मैंने जान लिया कि मैं समुद्र ही हूँ। बस ये श्रुति जो है आपके भीतर श्रवणात्मक ज्ञान उत्पन्न करके ये परमानेंट परिवर्तन कर देती है और आप रुक जाते हैं, अब जहाँ है वहाँ ही रह जाते हैं। तो अगर लग रहा है कि ये जो उपनिषद जो है कुछ तो है अंदर, नहीं तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कौन आता? क्यों इतने ऋषि मुनि अपना समय ये चर्चा में डालते? उसके ऊपर शंकराचार्य जी भाष्य भी क्यों लिखते? ये मांडुक्य उपनिषद विशेष क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा है, शंकराचार्य जी के दादा गुरु शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य के गुरु स्वामी गौड़पादाचार्य जी, और ये जो गौड़पादाचार्य जी है, ओम नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्त शिष्यम। ठीक है, तो ये किसके किसके शिष्य हो गए भाई? शुकदेव जी के शिष्य हो गए। व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम, तो ये जो गुरु परंपरा से ये आया हुआ है, ये किसी के मन में नहीं आ गया कि लिख सके, ये लिखने से या बैठने से प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सब अनुभवात्मक जो मंत्र जो है वो ध्यान से ही प्राप्त होते हैं। न चक्षुषा गुरु, ये कहाँ लिखा है? मुंडक उपनिषद में इसका जवाब दे दिया है। अगर आश्चर्य हो कि ये सब किसने लिखा है, कहाँ से आया, मनुष्य ने ही लिखा है नो डाउट, पर उसे आया कहाँ से? न चक्षुषा गृह्यते नान्य ही देव ही तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यति निष्कलम ध्यायमानः। ध्यान करने से ही ये प्राप्त होता है। तो ध्यान में निधिध्यासन के बाद की जो अवस्था है, ध्यान याने जब परमात्मा का एकत्व हो जाता है, ध्यान याने आपके स्वभाव में आप बैठ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तब जो भी विचार आया ना, जो भी अनुभूति हुई वो लिखी हुई है और हमें वहां तक पहुंचना है। ये जो अनुभूति है ना, ये अनुभूति क्या है बताएं? ये कोई ऐसी व्यक्ति के भीतर से झलकी हुई है जिसे अब कोई भी रूप देखने की इच्छा नहीं है। और हमारे साथ कंपेयर आप करते जाइए, इसका वजन, कोई भी रूप ये व्यक्ति को नहीं देखने की इच्छा है, कोई भी शब्द का श्रवण करना इसकी इच्छा नहीं है, स्पर्श की इच्छा नहीं है, रूप की इच्छा नहीं है, रस की इच्छा नहीं है, मन से कोई भी कल्पना करने की इच्छा नहीं है, बुद्धि से इस व्यक्ति को एक भी निर्णय अब नहीं लेना है। सब कोई कर्ता भाव भोक्ता भाव नहीं है, कुछ नहीं है और इसकी अनुभूति है और हमें वहां तक पहुंचना है। हमें उसकी अनुभूति से हमारी अनुभूति को जोड़ना है। थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो ये तैयार करना पड़ेगा ना, हाँ थोड़ा तो अधिकार प्राप्त करना ही पड़ेगा। और ये जो अधिकार जो है शास्त्र की परिभाषा में कोई भी ग्रंथ हम जब शुरू करते हैं तो अनुबंध चतुष्टय आता है, यानी अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। कोई भी पुस्तक शास्त्र की शुरू करते हैं तो ये चार चीजें आ जाती है। यहाँ शंकराचार्य जी उपनिषद के मंत्र शुरू करने से पहले संबंध भाष्य लिखना शुरू कर देते हैं, और उनके संबंध भाष्य में उन्होंने ऐसा कहा कि जो उपनिषद ओम इति एतत् अक्षरम इदगम सर्वम, यानी ओम ही जो है वो अक्षर है, अक्षर ये यानी ये अक्षर शब्द ही पूरा वेदांत आ गया अक्षर शब्द में। जो क्षर नहीं होने वाला है, जिसका विनाश नहीं है, जो नित्य है, तो भाई अनित्य क्या है, जो नित्य तीनों काल में है और अपरिवर्तनशील है, तो फिर तीनों काल में जो है पर अपरिवर्तनशील नहीं है वो क्या है, तो देश काल और वस्तु से बद्ध है, जन्मने वाला और मरण धर्मा है। जितने जितने जो संसार के नियम है वो सब जगत के कारण के नियम वो लग जाते हैं, और उससे पर ये परमात्मा अक्षर है। इदगम सर्वम ये करके जो निर्देशनीय है वो ये परमात्मा है। तो शंकराचार्य जी यहाँ संबंध भाष्य में बता रहे हैं कि इसका अनुबंध चतुष्टय जो है अधिकारी, संबंध या विषय मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं लगती है। उन्होंने लिखा है ये क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये वाक्य ही सब कुछ कह देता है कि अगर ओम ही सब कुछ है तो उपनिषद या ऋषि हमारे पास क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये सबको आप एक ही मानो, ये प्रयोजन है। भाई विषय क्या है, किसको मैं एक मानू, ओम को कौन एक मानेगा, जो ओम को जानने का अधिकारी होगा वो उसे जानेगा। और प्रयोजन क्या है, सब कुछ सर्वत्र ब्रह्म की भावना है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये प्रयोजन है। तो ये अनुबंध चतुष्टय हो ही गया। तो बोले कि ये जानने के बाद होगा क्या, तो शंकराचार्य जी ने एक दृष्टांत दिया है। इनके दिए गए दृष्टांत जो है इतने सरल होते हैं, उन्होंने एक ही दृष्टांत यहाँ दिया है कि जैसे रोगी को अपने रोग की मुक्ति के बाद जो स्वास्थ्य रूपी सुख मिलता है, ऐसा ही कुछ ये द्वैत प्रपंच में दुखी और संतप्त जो जीवात्मा है, वो द्वैत प्रपंच में संतप्त जीवात्मा को अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान जब होगा, अद्वैत ब्रह्म के बारे में जब वो सुन लेगा, जब उसे उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तब जो सुख और आनंद जैसे रोगी को रोग मुक्ति के बाद आता है, ऐसे ही द्वैत प्रपंच की निवृत्ति के बाद जो आनंद आता है वही परमात्मा है, और ऐसा ही आनंद ये सुनने से अपेक्षित है। यत्र ही द्वैत, फिर वो दृष्टांत देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी अभी उनके ये रोगी के दृष्टांत को अब वो समझा रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। भाई मैं नहीं कह रहा, उपनिषद ने कहा है कि द्वैत में दुख है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषद में कहा है। क्योंकि किसी किसी को द्वैत में भी दुख नहीं लगता है। अभी मूर्ता की पराकाष्ठा क्या कि द्वैत में ही दुख नहीं लगेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। द्वैत में आपको दुख कुछ तो हमारी तरफ से होना चाहिए ना, आप कंप्लेन भी करते आओ, कुछ तो कहो कि ये ठीक नहीं है, तो ही कुछ इलाज हो सकेगा। रोग है पर कोई डॉक्टर घर में तो आके ऐसा इलाज नहीं करने लगेगा ना, आपको कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना घर के लोगों को पहले। आप क्या कहेंगे, आपको कुछ हो रहा है और बताएंगे ही नहीं तो इलाज कैसे होगा, इलाज होगा क्या, नहीं इलाज नहीं होगा। किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि रोग है, दुख है, फिर औषधि के तरफ आपका गमन होगा। वैसे ही ये द्वैत प्रपंच में दुख का अनुभव होगा। आपको दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं, तो हाँ जब इच्छित चीज नहीं मिलती है या मिलके चली जाती है तो दुख होता है, अनिश्चित चीज मिलती है तो भी दुख होता है। तो ये दुख का जो क्षणिक हमें विचार आ गया, ये विचार ही हमें ये दुख की मुक्ति के उपाय के लिए दौड़ना सिखा देगा। इसी प्रकार भाई हमने देखा है बृहदारण्यक उपनिषद में, यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितरम इतरम शृणोति जिग्रति विजानाति। तो ये द्वैत होता है तब दुख, देखिए बुखार आता है, बुखार रूपी दुख हुआ तो असर क्या होगी, असर क्या होगी, शरीर का गर्म हो जाना असर होगी ना, दुख बुखार का सिम्टम। वैसे ही भाई द्वैत का सिम्टम क्या है, आप कहते हैं द्वैत में दुख है, हमें क्या पता द्वैत क्या है, द्वैत का रूप क्या है, तो द्वैत का रूप बताते हैं बृहदारण्यक में कि जब कोई किसी को देखता है ना तो वो द्वैत है भाई, कोई किसी को सुनता है तो वो द्वैत है। तदितरम इतरम विजानाति, इतरम इतरम अभिवदति, तो वो द्वैत का रूप है, ये सिम्टम है, और ये सिम्टम आप में है तो समझ लो द्वैत है। और उससे जो छुटकारा है, जैसे दुख की मुक्ति, रोग की मुक्ति औषध है, रोग का इलाज औषध है, ऐसे ये द्वैत का इलाज अद्वैत है, अविद्या है, अविद्या का इलाज विद्या है, जो हम प्राप्त करते हैं ये विद्या हम सबको सुगमतया प्राप्त हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। कल इसके ऊपर फिर हम विचार करेंगे।
1: हरिओम। आज 21 फरवरी गुरुवार, मां सुदी पूनम। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
2: ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ തിരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അദ്വൈതം മനസ്സിലാക്കണമോ ഭാഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ എന്താണ് അദ്വൈതം എന്നുള്ളത്? ശങ്കരാചാര്യന്റെ താല്പര്യം എന്ത് മനസ്സിലാവും? വിവേക ചൂടാമണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകരുത്, അബദ്ധമാണ്. വിവേക ചൂടാമണി അബദ്ധം എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ അബദ്ധത്തെ എത്തിച്ചേരും. അതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് ഭാഷയത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അത് എഴുതിയ ആചാര്യന്മാർക്കൊരു സദുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാമെന്ന്. കുറുക്കു വഴികൾ പലപ്പോഴും അപകടമാണ്. കുറുക്കു വഴിയിൽ കാര്യം ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ അദ്വൈതം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ മിക്കവാറും പേര് ഇത്തരം പ്രകടന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് കൃതാർത്ഥരാകുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ആ പ്രകടന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ താല്പര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു. എന്താണ് ആദ്യ ആത്മബോധം, പിന്നെ തത്വബോധം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം ഭാഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുക. അല്ലാതൊന്നും ആദ്യം ഭാഷ്യകാരൻ അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഭാഷ്യം എഴുതിയത്. ആ ഭാഷ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ക്ലേശമുണ്ട്. ആ ക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാരത്തരം ചെറിയ ബുക്കുകൾ എഴുതി. അതിന് പ്രയോജനമുണ്ട്. എന്താണ് അതിൽ നിന്ന്? അദ്വൈതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യും. ശരിയായ അദ്വൈതം, അദ്വൈതത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസത്യം, ജഗത് മിഥ്യ, ഇത് ഭാഷ്യത്തിൽ നിന്നേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭാഷ്യത്തിന്റെ വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും. മറ്റേ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, ബ്രഹ്മസത്യം, ജഗത് മിഥ്യ, അത് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന. എന്താണ് ആ മിഥ്യാത്വം, എന്താണ് സത്യത്വം? ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മസത്യം, ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് അധരിക്കും. അതാണ് ഈ പ്രകടന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതെങ്ങനെ ഒന്നാകും? എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രാപ്തം ദഹി പ്രാഗുത്പത്തെ രസദേവാസി. അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുമ്പ് അസത്തായിരുന്നു. എന്നാ ഇതം ശബ്ദവാച്യം ഇദാനീം ഇതം ജാതം, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി. ഇതം ശബ്ദവാച്യം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അസത്തായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി. ഇതാണോ താല്പര്യം? അങ്ങനെയാണോ ധരിക്കേണ്ടത്? പ്രാപ്തം ദർഹി പ്രാർത്ഥത്തെ അസദേവ ആസീത്. ഇതം ശബ്ദവാച്യം, മുമ്പ് അസത്തായിരുന്നു, ഇതം ശബ്ദവാച്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാനി ഇതം ജാതം, ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, സദേവ ഇതം ശബ്ദബുദ്ധി വിഷയതയാ അവസ്ഥാനാം. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്. എന്താണ് ആ സത്ത് തന്നെയാണ് സദേവ ഇതം ശബ്ദബുദ്ധി വിഷയതയ അവസ്ഥാനം. ആ സത്ത് തന്നെയാണ് ഇതം ശബ്ദ, ഇതം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായി പ്രസ്തുതിയും സത്ത് തന്നെയെന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുപ്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു സത്താണോ ആ സത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചമായി ഇതം ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായി രണ്ടാണല്ലോ ശബ്ദവും ബുദ്ധിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായി എന്തെല്ലാം അനുഭവമുണ്ടോ അതെല്ലാം സത്ത് തന്നെ. ഇവിടെ രണ്ട് സത്തുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു സത്ത്, ഇന്ന ഒരു സത്ത്, അങ്ങനെയല്ല, ഒരേ ഒരു സത്ത് തന്നെ. അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുപ്തി, കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. ആ സത്ത് സുഷുപ്തിയിൽ ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായിരുന്നില്ല. ആ സത്ത് ഇപ്പോ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സത്ത് ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ സത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ട്? സുഷുപ്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ സത്ത് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസത്വമെന്ന് വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ സത്വം ചെയ്തു, ഇതം ശബ്ദ ബുദ്ധി വിഷയതയ അവസ്ഥാന സത്ത, ആ സത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഉണർവിലും സ്വപ്നത്തിനും എല്ലാം ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായിരിക്കുന്ന ആ സത്ത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയാ മിഥ്യ? ഇവിടെ ഏതിനു മിഥ്യ എന്ന് പറയും? ശബ്ദത്തിനും ബുദ്ധിക്കും വിഷയമായി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ സത്തല്ലാതെ രണ്ടാമതൊന്നുമില്ലല്ലോ മിഥ്യയാക്കാൻ. മിഥ്യയെന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളാൻ മറ്റൊന്നും, നമ്മൾ മിഥ്യയെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മം സത്യം, പ്രപഞ്ചം മിഥ്യ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ രണ്ടു തരത്തിലാണ്, ഒന്ന് ശബ്ദം, മറ്റൊന്ന് ബുദ്ധി. രണ്ടു തരത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആ ശബ്ദബുദ്ധിയിലൂടെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു? ഈ നാമരൂപം നിങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതെല്ലാം സർവവും. ഇത് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? സത ഏവ, അസത്ത് തന്നെയാണ്. ഇതിനോട് സത്ത് അസത്ത് എന്നങ്ങനെ തിരിക്കും? തിരിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ടില്ല, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ താല്പര്യം? ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈതത്തിൽ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ്? ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെയും ബുദ്ധിയിലൂടെയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇത് സർവവും സത്യം തന്നെ. ഇത് അടിവരയിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മസത്യമെന്നും ജഗത് മിഥ്യയെന്ന് പറഞ്ഞാലും താല്പര്യമൊന്നും. ഇത് ഭാഷ്യകാരൻ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും, ഭാഷ്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ബ്രഹ്മം സത്യം, ജഗത്ത് ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ്. ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ശൂന്യം. അത് നമുക്കൊരിക്കലും ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല, ഈ ജഗത് മിഥ്യ.
1: ഓം നമ ശിവായ. ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് ശൈവം ഡോട്ട് ആൾ, ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Apne kiye is jagat ki rachana, dukkhalayam, asaswatam. सुखालयम शाश्वतम के जगत की रचना क्यों नहीं की है? सुखालयम का अर्थ क्या होता है? जहां सुख मिले उसका नाम सुखालय, जहां भोजन मिले उसका नाम क्या है? भोजनालय, जहां विद्या पढ़ने को मिले उसका नाम क्या है? हाँ, जहां औषधि मिले औषधालय, आलय माने खजाना, आलय माने प्रचुर मात्रा में जो वस्तु जहां मिले उसका नाम क्या है? आलय। औषधि जहां मिले वह औषधालय, भोजन जहां मिले वह भोजनालय, पुस्तक जहां मिले पुस्तकालय, इसी प्रकार से दुख जहां मिले, कहां मिले दुख? संसार। ये भगवान ने बनाई है दुखालय जगत है। महाराज सुखालय क्यों नहीं बनाया, दुखालय क्यों बनाया? बोले दो चीज है बेटा, इमं प्राप्यम भजस्व मां, सुखालय मैं हूं, दुखालय जगत है। तुमको सुखालय चाहिए तो, सुखालय चाहिए तो मेरे आश्रय में आओ, मुझे प्राप्त कर लो, मेरे शरण में आओ, मेरे चरण में आओ, मुझे प्राप्त करो। और यदि मुझे प्राप्त नहीं करते हो, जगत को प्राप्त करते हो, तो फिर दुखालयम। देखो हमने जगत बनाकर और जगत में साइन बोर्ड लिख दिया है, जगत बनाया और जगत में साइन बोर्ड भी रख दिया है। साइन बोर्ड क्या रखा है? दुखालयम। जगत बनाकर हमने वो साइन बोर्ड न लिखा होता, न रखा होता, तो हमारी गलती थी। तुम साइन बोर्ड पढ़ते नहीं हो, साइन बोर्ड पढ़े बिना भोजनालय में पुस्तक लेने जाओ तो क्या कहेगा भोजनालय का मालिक? क्या कहेगा वो? भोजनालय में पुस्तक खरीदने जाओ, मुझे गीता की एक पुस्तक दे दो, रामायण की एक पुस्तक दे दो, तो दुकान वाला क्या कहेगा, भोजनालय वाला क्या कहेगा? अरे बाहर साइन बोर्ड नहीं पढ़े हो, ये तो भोजनालय है, पुस्तकालय थोड़ी है। पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाऊं, कहेगा कि नहीं बोलो? इसी तरह पुस्तकालय में जाकर तुम कहोगे कि हमको बढ़िया रस पूड़ी, श्रीखंड वासुदी, पकौड़ा, पापड़, अचार की एक थाली भोजन दे दो, वो क्या कहेगा? साइन बोर्ड पढ़े बिना घुस गए अंदर, बाहर इतना बड़ा साइन बोर्ड लिखा है ये भोजनालय है या ये पुस्तकालय है, और तुम यहां आके भोजन मांगते हो? तो तुम क्या उत्तर देते हो? हाँ सॉरी, हाँ हमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा है। इसके अलावा और क्या उत्तर है? मुझे लगता है जगत में प्रवेश करने से पहले हमने भी जगत के बारे में जो साइन बोर्ड था वो नहीं पढ़े, और भगवान ने जगत बनाया और जगत बनाकर साइन बोर्ड रख दिया था अनित्यम असुखम दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन हम साइन बोर्ड पढ़े बिना जगत में घुस गए, परिणाम अब चारों तरफ से दुख ही दुख मिल रहा है, तो पश्चाताप करते हैं कि ये क्या हुआ गया। तो भगवान जवाब देंगे, तुम साइन बोर्ड पढ़े बिना घुसे हो इसीलिए यही समस्या आएगी। फिर हमको सुख चाहिए, सुखालय। बोले भजस्व मां अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। सुखालय चाहिए, सुख चाहिए तो तुम मेरा भजन करो, क्योंकि इधर सुखालय इधर दुखालय, तुमको किधर जाना है? तो जिसने साइन बोर्ड पढ़ ली वो तो सुखालय इधर है करके परमात्मा के तरफ चल पड़ा, और जिसने साइन बोर्ड न पढ़ी है वो जगत के तरफ चला, तो दुखालय में फंस गया। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे पशुपते, अपने जगत की रचना क्यों की? वो श्रुति है, एको हम बहुश्याम प्रजाये या, मैं अकेला हूं, मैं अनेक होकर देखूं तो कैसा होता हूं, कैसा लगता है? अकेले रहने का आनंद तो मुझे आ रहा है, अनेक होकर खेलने की मजा जो चाहिए मुझे, वो अकेले बैठने में नहीं आ रहा है। अकेले बैठने का आनंद जो आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अनेक होकर खेलने की मजा है वो तो अनेक हुए बिना वो आएगा नहीं वो मजा। एको हम बहुश्याम प्रजाए, इस माया वृत्ति से उसने संकल्प करके एक से अनेक हो गया। एक से अनेक हो गया। श्रुति आगे कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत। अनेक होने के बाद वह जितने भी हुए हैं एक से भिन्न, उस सभी में अस्थि भाति और प्रिय के रूप में वह अनुप्रविष्ट हुआ है। ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा नहीं है जगत। परमात्मा ने जगत बनाकर अपने आप सातवें आसमान में बैठकर तमाशा देखता होता तब तुम्हारा कहना यह ठीक था कि परमात्मा ने दुखमय जगत बनाकर फंसा दिया हमको और अपने आप सातवें आसमान में बैठकर तमाशा देख रहा है। कुछ लोग होते हैं किसी के झगड़ा लगा देते हैं और दो आदमी झगड़ते रहते हैं, वो अपने दूर बैठकर तमाशा देखता है, उसको तमाशावीन बोलते हैं। ऐसे भी होते हैं संसार में तमाशा देखने वाले, उनको तमाशा देखने में मजा आता है। तमाशा करने की अपेक्षा तमाशा देखने में मजा आता है। लेकिन परमात्मा की विशेषता क्या है? जगत की रचना करने के बाद वो सातवें आसमान में बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है। तमाशा करने वाला खुद बन गया। जगत रचना करके तमाशा करने वाला खुद बन गया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, झगड़ने वाला भी वो खुद बन गया, झगड़ा लगाने वाला भी वो खुद बन गया और तमाशा देखने वाला भी वो खुद बन गया। क्योंकि इन सब के बिना जगत का मजा ही नहीं है। समझे कि नहीं? इन सब के बिना जगत का मजा ही नहीं है। जगत का मजा इसी बात पर है, एक तरफ झगड़ा भी करो एक तरफ प्यार भी करो, इसी में जगत का मजा है। वो बढ़िया बढ़िया रस और खीर पूरी खाओ, थोड़ा सा मिर्ची का टुकड़ा भी चबाना जरूरी है। बोले मिर्ची क्यों खा रहे हो रस पूरी खाते समय? बोले महाराज मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा रस पूरी के सामने मिर्ची? क्या मतलब है? बोले जरा स्वाद बढ़ेगा, जरा स्वाद बढ़ेगा। यही तो संसार का स्वाद है भैया, यही तो जगत का स्वाद है ना। क्रीडार्थम सृजति, हम इस रहस्य को नहीं जानते तब हमारे लिए समस्या बन जाता है ये जगत। जो इस रहस्य को जानता है उसके लिए जगत समस्या नहीं बनता है। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, सबसे पहले परमात्मा ने जगत रचना करने के लिए पांच वस्तुओं का निर्माण किया। उन पांच वस्तुओं के माध्यम से बना हुआ जगत को प्रपंच कहते हैं। पांच का खेल है ये जगत, इसलिए ये प्रपंच है। अपंचीकृत पंच तन्मात्राओं का केवल सूक्ष्म सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर है। पंचीकृत पंच तन्मात्राओं का खेल स्थूल जगत है, स्थूल शरीर है। चाहे स्थूल प्रपंच हो, पांचों का खेल है, पंचीकरण हुआ। चाहे सूक्ष्म जगत हो, पांचों का खेल है अपंचीकरण से। तो स्थूल सूक्ष्म ये सारा प्रपंच, प्रपंच का अर्थ पांच का खेल बस। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचयिताय अधम शरीरा इत्यादि इत्यादि प्रपंच की उदाहरण है। प्रयोजन, सृष्टि रचना का प्रयोजन बताया पहले, क्रीडार्थम सृजसी अखिलम प्रवचम किम सृजसी भवान। विश्व प्रपंच की रचना आपने क्यों की? भगवान उत्तर दे न दे, शंकराचार्य जी खुद उत्तर दे रहे हैं, क्रीडार्थम सृजसी, खेलने के लिए अपने ये प्रपंच को बनाया है। इसीलिए क्रीडा मृगास्ते जना, जना संसार में जितने भी जीव हैं, जो अनेक हुए हैं, संसार में जितने भी जीव हैं जो अनेक हुए हैं, ये जना ते क्रीडा मृगा, तुम्हारे खेल के लिए ये क्रीडा पशु हैं, क्रीडा पशु, क्रीडा मृग हैं, खेल के पशु हैं। देख लो आजकल फुटबॉल का खुमार चढ़ रहा है विश्व में। एक आदमी फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल का मजा आएगा एक आदमी को? कितने खिलाड़ी हैं खेल रहे हैं, खेलने वाले खेल रहे हैं, हारने वाले हार रहे हैं, जीतने वाले जीत रहे हैं। हारने वाला दुखी होता है और जीतने वाला प्रसन्न होता है। खेल में दो भाव होते ही हैं, खेल में दो भाव होते ही हैं, ये अनिवार्य है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं। खेलते तो दोनों जीतने के लिए, वो भी खेलता है जीतने के लिए, वो भी खेलता है जीतने के लिए, लेकिन एक हारना अनिवार्य है कि नहीं बोलो? खेलते दोनों पक्ष हैं, दोनों जीतने के उद्देश्य से खेलते हैं, लेकिन खेल तभी संभव होगा, दोनों में से एक हारना अनिवार्य है, हारना पड़ेगा। हारना नहीं चाहता, हारना पड़ता है, हारना नहीं चाहता और हारना पड़ता है, न तो खेल बनेगा ही नहीं। तो जब वो हारता है तो फिर दुखी हो जाता है, दुखी होने के लिए खेलने गया था वो, हारने के लिए खेलने गया था। खेलने वाला खिलाड़ी टीम ये जानता है कि नहीं, एक पक्ष को हारना जरूरी है, हारने वाला पक्ष दुखी होगा, ये जानता है कि नहीं? खिलाड़ी जानते हैं कि नहीं, ये बात जानते हैं कि नहीं अच्छी तरह? लेकिन हर खिलाड़ी क्या खेलता है, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा। हर खिलाड़ी खेलते समय में किस भावना से खेलता है बोलो? उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा, इसी भावना से पूरी तरह खेलता है। हारने वाला भी जब तक नहीं हारेगा, भावना क्या रहती है उसकी, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा। लेकिन नियम ऐसा बन गया है कि एक को हारना जरूरी है, एक को जीतना जरूरी है, और जिस समय वह हारता है तो समस्या क्या होती है, समस्या मन में सोचा था, मैंने सोचा था, प्रयत्न किया था जीतने के लिए, मेरे संकल्प करते हुए भी, मेरे इच्छा होते हुए भी, मेरे प्रयत्न करते हुए भी, मेरे कोशिश करते हुए भी मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया, उसको सत्य रूप में स्वीकार करेगा तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से मैं हारा बोलता है वो, जबकि अनिवार्य था हारना, था कि नहीं बोलो, जबकि हारना अनिवार्य था, एक पक्षों का हारना अनिवार्य था, लेकिन जो हारने वाला है वो कहता है कि अप्रत्याशित रूप में मुझे हारना पड़ रहा है, उसको हारना चाहिए था, मैं हार गया, मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया, उसने मुझे हराया, दुख का कारण हुई, सृजना हो गई। खिलाने वाला भी एक को जिताने और एक को हराने के लिए ही खिलाता है कि नहीं बोलो, खिलाने वाला भी एक को जिताने और एक को हराने के लिए ही खिलाता है, खेलने वाला भी जानता है कि एक को हारना पड़ेगा, लेकिन वो हारने वाले में से मैं हूं ऐसा नहीं मानता है, मैं जीतने वालों में से होना चाहिए, ये उसके दुख का कारण है। बस बहुत सुंदर भाव है इस श्लोकों में, इस समर्पण भाव है इसमें समर्पण, पूरी तरह समर्पण भाव है। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम्, क्रीडा मृगास्ते जना, यत्कर्माचरितं मया च भवत, प्रीत्यै भवत्येव तत्। मया, ध्यान देना, यहीं पर महत्व रहस्य छुपा है, भक्त की यह दृष्टि है, वो दृष्टि हमारी जब तक नहीं बनती हम भक्त की कोटि में नहीं जाएंगे। हम अज्ञानी संसारी कर्ता भोक्ता मूर्खता के जीवन में रहें, कोटि में रहेंगे, भक्त की कोटि में तो हम नहीं जाएंगे। भक्त की कोटि में जाने के लिए ये दृष्टि, ये भाव हृदय में आना जरूरी है। यत कर्माचरितम मया च, हे पशुपते, मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं, मेरे द्वारा जो कुछ भी आचरण होता है, मेरे द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है, जागृत से लेकर शयन पर्यंत और शयन से लेकर जागृत पर्यंत, आसुप्तेरामृते कालम, जागृत से शयन पर्यंत और शयन से जागृत पर्यंत, जो कुछ भी मेरे द्वारा चेष्टा होती है, कर्म होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब के सब भवत प्रीत्यै भवत्येव तत्, वो सब आपकी प्रसन्नता के लिए होते हैं, आपके प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खिलाड़ी हैं, खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और मैं खिलौना हूं, मैं क्या हूं, खिलौना हूं, और आप क्या हैं, खिलाड़ी हैं। खेलने के लिए आपने मुझे खिलौने के रूप में निर्माण किया है, विडंबना यह है कि खिलौने के रूप में उत्पन्न हुआ हुआ यह खिलौना खिलाड़ी बन गया, विडंबना यह हो गई, था खिलौना बन गया खिलाड़ी। और खिलौना कहीं खिलाड़ी बन सकता है? खिलौना खिलाड़ी बन सकता है? खिलौना तो हमेशा खिलौना ही रहेगा, खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही रहेगा, खिलाड़ी खिलौना नहीं बन सकता, खिलौना खिलाड़ी नहीं बन सकता। और हमारी विडंबना यह है कि परमात्मा ने हमें खिलौनों के रूप में निर्माण किया था, हम उस बात को भूल गए कि हम हमारा विश्व सृष्टि में, विश्व प्रपंच विश्व सृष्टि में परमात्मा के दृष्टि से मैं एक खिलौना मात्र हूं, परमात्मा ने मुझे खिलौने के रूप में निर्माण किया है। तब तो खिलौने की जो चेष्टाएं हैं वो सब खिलाड़ी जो चेष्टा कराता है वही खिलौने की चेष्टा है ना। आप लोगों ने शतरंज खेली होगी, ना खेला हो तो देखा होगा, है ना? कई चीज होते हैं वहां, सेना होते हैं, हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, घोड़ा भी होता है, राजा भी होता है, वजीर भी होता है, मंत्री रानी भी होती है, हैं? सब होते और खेला जाता है। वो राजा अपनी मर्जी से खेलता है कि खिलाड़ी की मर्जी से खेलता है, हैं? वो राजा अपनी मर्जी से खेलता है कि खिलाड़ी की मर्जी से खेलता है? खिलाड़ी जिस खाने में ले जाकर रख दिया वहीं जाकर बैठेगा। हाथी अपने मर्जी से चलता है कि खिलाड़ी चलाता है? शतरंज का खेल तो देखा है ना। ऊंट अपने मर्जी से चलता है कि खिलाड़ी के खिलाने चलाने पर चलता है? राजा अपनी मर्जी से घिर जाता है कि खिलाड़ी घेरने पर घेरता है? मारते हैं वहां, हाथी ने ऊंट को मारेगा, ऊंट हाथी को नहीं मार सकता, उल्टा नहीं होता है, हाथी ऊंट को मारेगा, ऊंट घोड़े को मारेगा, सेनाएं घेरेंगे, शत्रु पक्ष का सेना, मित्र पक्ष का सेना, बंदी बनाएंगे राजा को, घेरेंगे चारों तरफ से। लेव जी खेल क्या बढ़िया मिलता है, बढ़िया खेल होता है। शंकराचार्य जी क्या सुंदर भाव व्यक्त करते हैं, जैसे शतरंज के खेल में जितने भी खिलाड़ी हैं, नहीं खिलौने हैं, उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती है, वह उनकी जो चेष्टा होती है वह खिलाड़ी के द्वारा फिक्स किया हुआ चेष्टा ही उनकी चेष्टा है। खिलाड़ी ने जो करवाया वही वो करते हैं, खिलाड़ी जो प्रेरणा दे रहा है वही वो प्रेरित होकर वही कर्म करेंगे। यत् कर्मा चरितं मया च भवतो प्रीत्यै भवत्येव तत्। हे महाराज, हे पशुपते, मैं जो कुछ भी क्रिया करता हूं वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं। खिलौना अपनी प्रसन्नता के लिए परिचालित होता है कि खिलाड़ी के प्रसन्नता के लिए? बोलो, खिलाड़ी द्वारा परिचालित खिलौना अपनी प्रसन्नता के लिए परिचालित होता है कि खिलाड़ी के प्रसन्नता के लिए सुख दुख के लिए परिचालित होता है? हैं? खिलाड़ी के सुख दुख के लिए, हाँ, उसकी क्रिया, खिलौने की क्रिया खिलाड़ी द्वारा परिचालित होने पर उसकी क्रिया खिलाड़ी के सुख दुख का कारण बनेगा, खिलौने के सुख दुख का कारण नहीं बनता। समझ गए कि नहीं, बोलो। चलाते समय में, उस खिलौने को चलाते समय, परिचालन करते समय में खिलाड़ी ने बुद्धि नहीं पहुंचाई, रख खिलौने को, अपने खिलौने को उसने गलत परिचालन की, तो शत्रु पक्ष, सामने का खिलाड़ी ने उसको मार देगा, मारेगा कि नहीं, और उसका खिलौना जो है बाहर हो गया, आउट हो गया, चेसिस से आउट हो गया, वो चेसिस से आउट हो गया, उससे शतरंज के उससे में बाहर हो गया वो खिलौना, मैं बाहर हो गया करके खिलौना रोएगा? हैं? कौन रोएगा? मेरा खिलौना बाहर हो गया, ये देखो उसने मेरे खिलौने को बाहर कर दिया करके खिलाड़ी ही दुखी होगा, खिलौने को तो कोई मतलब नहीं, उसको तो यहां रख दो, यहीं पड़ा है, उसने मार दिया तो नीचे रख दिया तो नीचे पड़ा है। समझ गए कि नहीं? दूसरे पक्ष का ने मार दिया, नीचे पड़ा गया, ये मर गया, नीचे रख दिया, नीचे ही पड़ा है, है? उसने अपने पक्ष को बचा लिया तो बच गया, तो ऊपर ही है वो, बच गया, खिलाड़ी खुश होगा, मैं बच गया कहेगा खिलौना, हाँ क्या कहना, मैं बच गया कहेगा वो खिलौना, उसकी अपनी चेष्टा ही नहीं है, क्योंकि उसकी चेष्टा उसी के सुख दुख के लिए नहीं है। देखो, ध्यान देकर सुनो।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा, प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
5: पूज्य माताजी के पुण्य चरणों में वंदन आप सब की तरफ से, संस्था की तरफ से, और सभी यहां जो स्टाफ मेंबर है उन सब की तरफ से महाराज माता जी को वंदन करते हैं। आज त्रयोदशी है, गणपति की जो अभी धूम मची है उसके बीच पूज्य माता जी का आगमन एक शुभ चिन्ह है, और माता जी ने जो विषय भी लिया है शिव महिमा, माता जी हम 28 तारीख तक यह प्रवचन द्वारा माता जी द्वारा रहेगी, प्रातः प्रवचन द्वारा, सायं भी माता जी को सुनने का आयोजन किया गया है जिसकी जाहिरात माता जी के प्रवचन के बाद होगी। आप सब की तरफ से फिर से माता जी को वंदन करते हैं। हरिओम।
6: बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत

शिवाय नमः शिवाय शिवतराय शिवतराय सद्घन चिद्घन आनंदघन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ हर वर्ष की न्याही प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के इस पावन सभागार में बैठे हुए प्रातकाल की इस पावन बेला में नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी अपनी ही पवित्र प्रिय अभिन्न आत्मा, अब की बार भगवत चर्चा। गिरीश भाई के मेरे को फोन आते रहे कि माता जी आप बोलेंगे किस विषय में, और प्राय वो दिन था शायद सोमवार का और सावन का महीना, तो मैंने कह दिया शंकर जी पर बोलूंगी, शिव महिमा पर। बार बार पूछ रहे थे किस विषय पे बोलेंगे गिरीश भाई अपने चिमन भाई, तो विषय तो कुछ सोचा नहीं था, और फोन आ रहे थे मुझे इनको हमें जाहिरात करनी है, बतानी है, बताओ बताओ। और ये सच बात है कि मैं पूर्व कुछ निश्चित नहीं करती हूँ, ठीक है, उस समय जो प्रेरणा होगी जो मन में आएगा बोलना, तो भगवान का ही नाम है वाचा रमणम नाम अधेयम, ये तो एक नाम का भेद मात्र है, तत्वतः तो एक ही है, चाहे उसे शिव कहो चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे नारायण कहो, अनेक नाम है, अनेक नामों में अनेक रूपों में जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, व्यापक सनातन नित्य शुद्ध मुक्त परम तत्व, वह तो एक ही है, एक ही अविनाशी है, परंतु नाम रूप के द्वारा हमने उन्हें अलग अलग किया हुआ है। बोले इन नाम रूपों की बड़ी भारी महिमा है, नाम रूप से रचा हुआ ये संपूर्ण जगत है, जगत दो ही चीजें हैं, नाम और रूप, और हम लोगों को अच्छा अभ्यास है नाम रूप के सहारे अपने मन को चलाने का, मन को दौड़ाने का, तो इसीलिए मन संसार की ओर चलता है बोले नाम रूप के पीछे, और इस संसार से मन को हटाने का उपाय भी एक ही है, नाम रूप का आश्रय, भगवान के नाम और रूप का आश्रय लेकर के संसार को से अपने मन को बड़ी सहज रीति से निकाला जा सकता है, तो इसलिए भगवान के नाम का परम आश्रय लें, वो चाहे कोई भी नाम हो, तो उसमें जो आदि सनातन शिव है, मैंने कहा शिव महिमा पर बोलेंगे, शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं मंगल को, शिव का अर्थ होता है शुभ, जहाँ शिव नहीं वहाँ शुभ कैसा, शिव शुभ है, कल्याण है, मंगल है, और हम सब लोगों की चाह क्या है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, और हम सबके लिए, अपने लिए ही नहीं सबके लिए कल्याण की भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हो, तो सब सुखी किससे होंगे, सबका कल्याण किससे होगा, सबका मंगल किससे होगा, बोले मंगलम मंगलानाम, मंगलों में जो मंगल, और पावनम पावनानाम, जो पावन में पावनता प्रदान करे, मंगल में मंगलता प्रदान करे, और जो सर्वत्र शुभ प्रदान करे, उसी का नाम तो शिव होता है, शिव ब्रह्मा भी है, शिव विष्णु भी है, और शिव रुद्र भी है, और शिव शक्ति भी है, शिव गणेश भी है, शिव नारायण भी है, अर्थात शिव के अनंत अनंत रूप हैं, अनंत अनंत नाम है, और शिव स्वरूप, ये शिव कौन, बोले ये शिव के रूप में विराजमान साक्षात आपके हृदय में जो विद्यमान नारायण है, आत्मा है, वही शिव है, इसलिए शिव कोई अन्यत्र नहीं, शिव तो निज स्वरूप है, इसीलिए तो आत्माष्टक आप बड़े सुंदर ढंग से पाठ करते हैं, शिवोहम शिवोहम, जो शिव स्वरूप है, जो शिव, इसीलिए कहा तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, उस शिव की महिमा, जो शिव
सर्वव्यापक है, जो परिपूर्ण तत्व है वही शिव है नारायण। और शिव के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि वेद हमारे पंचदेव उपासना का विधान बताते हैं, वेदों ने भगवान के दोनों स्वरूपों का निरूपण किया। भगवान सर्वगुण भी हैं और साकार भी हैं, परमात्मा निर्गुण भी है और निराकार भी है। निर्गुण निराकार को समझने के लिए, निर्गुण निराकार को समझने के लिए साकार है, यदि साकार न हो तो निराकार कैसे समझा जाए, और यदि निराकार न हो तो फिर ये सगुण साकार कैसे ये न हो। तो इसलिए वो निर्गुण भी होते हुए, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं है, अर्थात जो निर्गुण जिनके गुण निरंतर अर्थात जिनके गुण अनंतर हैं, जिनके कौन सा गुण उनमें नहीं है, जो अनंत गुण, अनंत नाम नहीं है। कहने का अर्थ नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है, माने नाम उसके इतने अनंत हैं कि कौन सा नाम नहीं है, कौन सा रूप नहीं है, अर्थात वो अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण। ये गुण नाम क्रिया के साथ जैसे जैसे परमात्मा अपने अनंत रूपों में अव्यक्त परमात्मा व्यक्त करके प्रकट करते हैं, प्रकट कैसे करते हैं, बोले अनंत रामों से, अनंत रूपों से, परंतु उन अनंत नाम रूप में प्रथम चार पांच नाम और पांच रूप बड़े प्रधान हैं। इसको कहते हैं पंचोपासना, पंचदेव उपासना। उपासना वेद की जो पद्धति है उसमें दो, जो उपासना की पद्धति है उसमें पंचदेव उपासना सनातन काल से चली आ रही है। सनातन धर्म का मतलब क्या है, बोले जो सनातन काल से, वेदोक्त काल से चली आ रही है निरंतर पंचदेव उपासना, अनंत नामों में, अनंत रूप में पांच देवता, जो पांच में एक तो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण, सूर्य देव हैं, और गणेश जी हैं, भगवती दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ये पंच देव हैं। इन पंच देवों में सूर्य नारायण और भगवान नारायण, जिन्हें सत्य नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, वद्री नारायण कहो, नर नारायण कहो, अर्थात ये तो एक ही है। सूर्य और नारायण एक है। ये पंचदेव में गणपति, भगवती दुर्गा और भगवान शिव, ये सदा शिव है, पराम्बा, ये भगवती शिवा हैं, और उनके संग में नित्य विराजने वाले भगवान शिव हैं, अर्थात परमेश्वरी और परमेश्वर। परमेश्वरी पराम्बा के साथ जो भगवान शिव और उनके संग में सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश, ये तीनों तो एक साथ हैं। प्राय आपने ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, गौरी शंकर के संग गोद में विराजमान है, बोले कौन, भगवान श्री गणेश। तो गणेश तो गणनायक हैं, प्रथम देव हैं, और ये तीनों एक हैं। अर्थात बात क्या आई, बात ये आई कि नारायण और शिव, हरि और हर, वास्तव में क्या ये दो है, बोले नाना ये दो नहीं है। हरि हर की सनातन एकात्मता है, सनातन रूप से एक है, कभी नारायण तो कभी शिव, कभी शिव तो कभी नारायण। नारायण और शिव में कभी कोई भेद नहीं है, अर्थात शिव द्रोही मम दास कहावे। भगवान कहते हैं जो शिव का द्रोही है, शिव के साथ द्रोह करता है और मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो नर तो मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, वो कभी मेरा उपासक नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों
एक हैं कहने के लिए अनेक हैं, दो हैं पर वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे रुपए का सिक्का एक होता है और उसके भाग दो होते हैं, दो भाग में दिखने वाला सिक्का एक है, उसी तरह से सनातन परिपूर्ण तत्व तो एक है। तत्व तो एक हो, एक हो हम द्वितीय एक होते हुए भी वो दो रूप में, अर्थात जैसे द्वितीय दो दूसरा नहीं है, पर दूसरा न होने पर भी दूसरा अपने आप को कर लेता, प्रकट करता है इस रूप में, जिससे कि उन्हें सृष्टि की जगत की ये लीला खेल खेलना होता है भगवान शिव के संग। इसीलिए भगवती की जब पूजा की जाती है

साधना हम सबों के लिए नित्य मंगलकारी है, नित्य कल्याणकारी है और नित्य ही ये हम सब के लिए शुभ करने वाली है। इनमें से किसी को छोड़ करके कोई व्यक्ति सोचे कि हमें मंगल की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, सो संभव नहीं नारायण। इसलिए आइए इनमें से जो आदि सनातन भगवान सदा शिव है, शिव समान को दाता नहीं, शिव के समान भला और कौन दाता है। शिव की महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको महिमन स्तोत्र में आप कहते हैं महिमन पारंते, महिमा जिसकी अपार है, जिसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। बोले ये महिमा, शिव महिमा हमें श्रवण करनी चाहिए। बोले कीर्ति का श्रवण करो, यश का श्रवण करो। श्रवण करने से हमारी उपासना में तीव्रता आती है। सुनना क्यों है, श्रवण क्यों करें? बोले जीवन में, उपासना में, भक्ति में तीव्रता लाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, गतिशील होनी चाहिए, गति देने के लिए हम अपनी उपासना, हम शिव भक्त हैं ऐसा मान करके अपने आप को ठहरा न ले वहीं पर, अर्थात हमारी भक्ति में, हमारी उपासना में इतनी तीव्रता हो, गति हो कि हमारे अंदर आतुरता आए कि हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो। उस तीव्रता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक तीव्रता नहीं होगी, बात तीव्रता लाने की है। ये महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि पंचदेव उपासना के मार्ग में जो हमारी स्थिरता आ गई है, क्योंकि तीव्रता नहीं होगी तो याद रखना प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार के निरंतर के श्रवण करने से, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक बार किसी के विषय में सुना जाता है तो सुनते सुनते सुनते उसमें हमारे भीतर आतुरता आती है कि जिसके लिए हम इतना सुन रहे हैं वो हमें मिले तो सही, परमात्मा मिले तो सही, शिव मिले तो सही। ऐसी आतुरता अपने भीतर लाने के लिए हमें उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए। बोले पहली भक्ति है श्रवण, सुनने से तीव्रता आती है। तो क्या सुनना चाहिए? बोले भगवान की कीर्ति सुननी चाहिए, भगवान का यश सुनना चाहिए, भगवान की महिमा सुननी चाहिए। श्रवण करने के लिए महिमा है तो इस महिमा का श्रवण करें, शिव की महिमा का श्रवण करें। महिमन पारंते, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जिस महिमा को स्वयं शारदा माँ भी उनकी महिमा का गान करने लगे ना, आप लोग निरंतर बोलते हैं असतगिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतर वरुशाखा लेखनी पत्र मृवि लिखत गिरित्वा शारदा सर्वकालम तदवितव गुणानाम ईशपारम नयाति। कि स्वयं शारदा माँ भी तीनों कालों का पर्याप्त समय लेकर के और सब वनों की लेखनी बनाकर, सब समुद्रों की स्याही बनाकर, अखंड ब्रह्मांड का कागज बनाकर सर्वकाल में लिखना चाहें तो वो भी नहीं लिख सकती हैं, इतनी अपरंपार महिमा है। पर फिर भी ऐसी अपरंपार महिमा श्रवण करते हुए एक जन्म नहीं अनंत जन्म हमारे लग जाए तो भी उनकी महिमा को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे या गा पाएंगे ये कहना तो संभव नहीं, परंतु फिर भी जितना हमें समय मिला, अधिकश अधिकम, ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति को, अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुनना चाहिए। बोले सुनना क्या चाहिए? उनकी महिमा। महिमा कैसी है, ये शिव कैसे हैं? कि एक बार सृष्टि के कार्य में, पूर्व समय की बात है कि शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी चले भगवान श्री हरि विष्णु के पास, और जब ब्रह्मा पहुंचे तो जाकर खड़े हो गए,

0: बड़े हो गए तो सोचा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा, सकल सृष्टि का नायक, सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए मैं विधि हूँ, विधाता हूँ, तो मुझे नारायण को प्रणाम करना चाहिए और जाति में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। और श्री हरि नारायण सोचते हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, पद्मनाभ, पद्म के नाम से जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, ये मेरे पुत्र हैं, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। कहा कि आकर खड़े हो गए, शिष्टाचार धर्म भी भूल गए कि इन्हें आकर के पुत्र को पिता के सन्मुख हाथ जोड़ करके शीश दबाकर पिता को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए। ये शिष्टाचार धर्म छोड़ दिया, भगवान श्री हरि को बुरा लगा और ब्रह्मा जी को लगा कि देखो मैं सारी सृष्टि को पैदा करने वाला हूँ और मैं सब कर, मेरा कार्य इतना महान है, मैं इनसे बड़ा हूँ, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये मैं बड़ा का झगड़ा नारा, ये मैं कौन, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा और श्री हरि विष्णु कहे मैं बड़ा, इनमें भी बड़े को बड़े छोटे को लेकर, और हम मनुष्यों में तो ये बात रहती है, मैं यदि न हो तो झगड़ा ही न हो। तो हर नारायण भी कहते हैं मैं बड़ा और ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, इन दोनों को बड़े बड़े लेकर के आपस में विवाद हो गया। और ये विवाद नारायण कहे कि तुमको मुझे प्रणाम करना चाहिए और ब्रह्मा जी कहे कि नहीं तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि युद्ध के रूप में प्रणीत हुआ। जब दोनों का युद्ध के रूप में प्रणीत हो गया ये विवाद, तो ठीक उसी समय उन दोनों के बीच में, इस युद्ध के बीचों बीच एक ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसमें दिव्य ज्योति है, केवल ज्योति है, और यह अग्नि के समान एक दिव्य ज्योति स्तंभ जैसे ही प्रकट हुआ, उस ज्योति स्तंभ से आवाज आई, आवाज ये आई कि मेरे आदि और अंत का पता लगाओ।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya.
3: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, we are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Aur main jab bachpan mein Kasi mein gaya tha, samay Dhundraj ke बगल में महाराज जी, एक ही बार उनको दर्शन किया मैं, पहली बार। और एक सज्जन और कुछ लोग बैठे हुए थे उनके सामने, तो एक सज्जन ने महाराज जी से प्रश्न किया कि श्राद्ध करते हैं तो वो जीव कहाँ रहता है, क्या रहता है, वो उनको पहुंचता है क्या? तो महाराज जी ने, मैं बहुत छोटा था तो, लेकिन बहुत श्रद्धा से सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। और उनको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये आपको कहने का नहीं है। जब वहां होगा तब ना उनको पहुंचेंगे, नहीं होगा तो आपको लौट के आएगा, उन्होंने बोला। जब आप पत्र लिखते हैं और एड्रेस, वो तो पता नहीं है आप कहां लिखते हैं, कहां लिखते, कौन सा एड्रेस है, वो व्यक्ति वहां है कि नहीं है, लेकिन लिखते हैं कि नहीं, तो फिर वहां व्यक्ति होंगे तो वहां पहुंच जाएगा उनको। यदि नहीं होगा क्या होगा? यही उन्होंने, उनका पहली बार दर्शन हुआ और उनका जो ग्रंथ है और उनसे मैं थोड़ी बहुत परिचित हूं, और महाराज जी के वचन का मैं जब भी जहां प्रवचन करता हूं एक वचन तो कम से कम कहना कहता हूं उनके बारे में। और आपने आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े बड़े संत लोगों का भी सभा मैं संचालन किया था, वहां भी मैं महाराज जी का नाम एक बार तो लेता हूं। ये हमारे आश्रम के मंथली मैगजीन है, वो एक विश्वमीमांसा, उसका तेलुगु में प्रचारित होता है, वो रमन महर्षि ने उसका नाम रखा है। हमारे गुरुजी का गुरुजी रमन महर्षि है, तो उन्होंने रमन महर्षि के पास जाके पूछा कि एक मैगजीन रखना है, उनको नाम रखिए, तो उन्होंने बोला विश्वमीमांसा। विश्व माने प्रपंच है, भगवान है विश्वम विष्णु षटकार है, और मीमांसा माने चर्चा है। तो उस विश्व मीमांसा में मैं संपादक हूं उसका, तो उसमें भी कभी संदर्भ आवे तो महाराज जी का नाम तो उल्लेख करता ही है महाराज जी का। तो यहां आने का अवसर ऐसा मेरे को संप्राप्त हो रहा है कुछ कई सालों से, तो एक प्रभादेवी में एक छोटा सा अपना अपने महाराज जी का एक संस्था है, तो श्रावण मास में यहां मुझे रहना पड़ता है। तो पहले मैं एक साल पहले ही मेरा निश्चित होता है कि पहले दिन का यहां अवश्य आना ही है, तो सब संतों को सुनेंगे, मैं सुनने के लिए आ रहा हूं। ओम हरि ओम।
2: बहुत सुंदर स्वामी हरितीर्थ जी, अनेक वर्षों से आते थे अपने कार्यक्रम में, और इस वर्ष मैंने कहा कि आप भी 5 मिनट तो सुनाइए, तो उन्होंने स्वीकार किया। आंध्रा से शरीर होने के कारण इतनी अच्छी हिंदी है, तो उसमें भी आनंद आया, और महाराज जी की तेलुगु मैगजीन में भी अनेक संस्मरण आप लिखते रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। अब हमारे महाराज जी की सेवा में बहुत वर्षों तक जो रहे हैं और अनेक वर्षों के बाद मिलना होने के कारण थोड़ा पहचानने में भी कठिनाई हुई हम लोगों को भी, ऐसे स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जो इस समय गो सेवा और वनवासियों की सेवा में लगे हुए हैं अमरावती क्षेत्र में, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो अपने भाव पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में समर्पित करें। स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती।

0: श्री सरस्वती नमः ॐ श्री गुरुवे नमः अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री गुरुवे नमः हमारे वयोवृद्ध स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज और दूर दूर से पधारे हुए सभी संत महात्मा और मेरे गुरु भाई जो सन्यासी बैठे हैं उन सब के चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूं। यहां बहुत से भाई और बहनें हमारे परम आराध्य हमारा हृदय यहां की स्मृतियों से भर आया है, इसलिए क्षमा करें बोलने में कठिनाई हो रही है। यहां का ये जो प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन है ये धन्य है। यहां के एक एक कण में महर्षि का पाद विन्यास हुआ है। मैं उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने महर्षि के चरणों में बैठ करके सत्संग प्राप्त किया उनका मैं आभारी हूं कि मैं भी उनके साथ सत्संग में बैठता था और मैं अपने को अहोभाग्य मानता हूं, भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे दिव्य महापुरुष के चरणों की सेवा का मौका मिला। ऐसे दिव्य महापुरुष अवतारी पुरुष मैं अपने लिए क्या कहूं, मेरे लिए महर्षि केवल गुरु नहीं थे। लोग कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए महर्षि केवल गुरु नहीं, उन्होंने माता पिता और इष्ट का, जिस इष्ट की प्राप्ति के लिए लोग घर बार छोड़ करके एकांतवास में तपश्चर्या करते हैं, साधन भजन करते हैं, हमें उस सब की प्राप्ति हुई। कुछ भी शेष नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तो प्रारब्ध से प्रारब्ध के अनुसार होता है, लेकिन हमारा ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य था कि मैं एक सरकारी नौकरी करता था और वो भी हिमाचल प्रदेश में, किसी कार्य से दिल्ली आया हुआ था और लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक छोटा सा वहां बोर्ड लगा हुआ था, उसमें महर्षि के प्रवचनों की सूचना लिखी हुई थी। प्रायः महर्षि के प्रवचन जब होते हैं कहीं भी बड़े बड़े विज्ञापन कभी नहीं छपते थे, जिस प्रकार आजकल विज्ञापन होते हैं, महर्षि को विज्ञापनों से अरुचि थी। अखबारों में जब महर्षि के लेख आते, प्रवचन आते, तो महर्षि भी उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लोग फोटो खींचने की धुन लगाते थे। यहां आप लोग जानते हैं, मुझे स्मृतियां सब मुझे याद आ रहा है कि हेमलता बहन और धानुका जी ने और हमारे बच्चू भाई जी ने, मधु भाई जी ने और भी जो हमारे भाई बहने आज हैं या नहीं हैं, कुछ भाई बहन महर्षि में समा चुके हैं, उन्होंने महर्षि पर एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि महर्षि का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा है, एक स्मृति के रूप में एक वीडियो बना के रख ली जाए। तो धानुका जी उस वीडियो टेप को वृंदावन भी लेके आए। महाराज हंसते थे ये क्या हो रहा है। दो तीन दिन के बाद महाराज ने बिल्कुल साफ कह दिया हेमलता बहनों की, देखो ये हमें सब पसंद नहीं, महर्षि क्या थे। कोई भी बालक, कोई भी बेटा अपने मां बाप का गुणगान क्या करेगा, वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है। शिष्य भी गुरु का क्या गुणगान करेगा, उसका तो सब गुरु ही है। इसलिए हम महर्षि के बारे में तो क्या बोले, हमारा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है, कुछ बाकी रहा नहीं है। बाकी तो अपने प्रारब्ध पर हम जहां भी रहें उनकी कृपा निरंतर बरस रही है। हमें महर्षि प्रतिक्षण याद आते हैं और हर तरह से उन्होंने हमें संभाल के रखा है। मैं इन्हीं वचनों के साथ महर्षि के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ अपने सभी जो हमारे गुरु भाई बहन जो महात्मा हैं या गृहस्थ हैं सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। हरिओम तत्सत। हरिओम।
1: ओ पंक्ति याद आती है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। आज स्वामी स्वरूपानंद जी के भाव इतने वर्षों के बाद मिलने के बाद भी महाराज जी के प्रति जो भाव उनके बढ़ते जा रहे हैं, बहुत महाराज जी की कृपा है, हम उनको नमन करते हैं। अब इसके बाद हमारे परम श्रद्धेय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, जिनकी आज बहुत व्यस्तता है, आप पूछेंगे क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। तो हमारे गुरुदेव के साथ सब लोग तालियों के साथ उनके जन्मदिन के लिए भी आनंद मनावे। और उनसे जब गिरीश भाई ने समाचार दिया महाराज जी के आनंद जयंती का, तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक सुबह का अपना कार्यक्रम बहुत शीघ्र निवृत्त करके और यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में पूज्य महाराज जी के इस आनंद जयंती में शामिल हुए। हमको बहुत खुशी है। मैं उनसे कहूंगा अपनी आनंदमय वाणी से आनंदमय संस्मरण आनंद जयंती में सुनावे स्वामी श्री चिदंबर आनंद जी महाराज।
2: ओम।

अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनाय परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम। आज जिनकी पावन स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उन महर्षि को बारंबार प्रणाम। आज की सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी उमेशानंद जी महाराज, इस सभा का संचालन कर रहे हमारे परम प्रिय परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी प्रत्यक्ष बोधानंद जी महाराज, अन्य सभी सम्माननीय पूजनीय संत विद्वज्जन, परमार्थ पथिक सज्जनों एवं माताओं, सबसे पहले तो आनंद जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और मैं कैसा महसूस कर रहा हूं आप खुद समझ सकते हैं। आज पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद को लेने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। संयोग है कि एक ही दिन पड़ा और गिरीश भाई ने जैसे बताया है तो मैंने कहा कि संतों का दर्शन भी होगा, संतों का आशीर्वाद भी होगा। आनंद जयंती, अगर ये मैं कहूं कि आज ही के दिन आनंद प्रकट हुआ था तो गलत नहीं होगा। आज ही के दिन आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। आनंद जयंती की सार्थकता तब होगी जब उस आनंद का जन्म हम सबके हृदय में भी हो। जैसा हम महात्माओं से सुनते हैं कि आनंद तो सबके अंदर में है ही, जन्मना नहीं है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि जन्म किसका होता है, आत्मा को तो जन्म होता नहीं, शरीर का जन्म होता है। और आप लोग वेदांती हैं, आप जानते ही हैं कि शरीर की कोई सत्ता नहीं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि आनंद जयंती की सार्थकता तब है जब उस आनंद का जन्म हमारे अंदर हो, कहने का तात्पर्य यह है कि वो आनंद का जन्म होने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जिस आनंद को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे अंदर में है। इन आनंद जयंतियों जैसे अनेक महापुरुषों के उत्सवों को मनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण इतना ही है कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं, वो हमारे अंदर है, उसको हम जान सकते हैं। संतों ने बड़ी कोशिशें की हैं, प्रयास किए हैं ये बताने के लिए कि आप सत्संग करो, आप संतों का साथ करो, उन्हीं के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। बड़े बड़े कवियों ने एक बात कही है कि संसार में अगर आपके लिए सबसे बड़ा बंधन है तो वह है संग, आसक्ति। आसक्ति को अच्छा नहीं माना जाता, संग को अच्छा नहीं माना जाता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। संग आपका विनाश की ओर लेकर के जाता है, आपको विनाश की ओर लेकर के जाता है संग। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि संग की इतनी बुराइयां सुनी है सबने, संग के विषय में इतना कुछ कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा एक नया विचार है। क्या? प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधुष कृतो। अगर वही संग, वही आसक्ति किसी महात्मा के साथ हो, किसी संत के साथ हो, तो क्या लिखते हैं कि कहां संसार का संग, की दुनिया का संग, की पदार्थों का संग व्यक्ति के लिए अमर अजर पाश है, बांधने वाला है। और वहीं सैव साधुष कृतो, अगर वही महात्माओं का साथ हो गया तो मुक्त द्वार, मोक्ष द्वार मपावृतम, आपके बंद मोक्ष के बंद दरवाजे को खोलने वाला हो जाता है। भगवान कपिल कहते हैं कि जिस आनंद की आप खोज कर रहे हो वो आनंद मिल नहीं रहा है। लोग दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते खत्म हो गए, न जाने कितने पैदा हुए, न जाने कितने पैदा होंगे, कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है, लेकिन उसको कोई पा नहीं सके। भगवान कपिल कहते हैं कि इसी भीड़ में से, इन्हीं लोगों में से,
और जिन लोगों ने संसार का साथ छोड़कर संसार की आसक्ति का त्याग करके अपने आप को संतों के साथ में जोड़ा, महापुरुषों के साथ में जोड़ा, मोक्ष द्वार में पावृतम, उनके लिए आनंद स्वयं खुल गया, दरवाजा खुल गया। जिसको ढूंढ रहे थे मालूम पड़ा वो तो हमारे यहां बंद था, वो खुल गया, प्राप्त हो गया। मोक्ष द्वार में पावृतम, मोक्ष का बंद दरवाजा खोल देता है। कहने का अर्थ है कि जो अज्ञान का पर्दा था वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये ऐसे उत्सव हमको संतों से जोड़ते हैं। आप देख ही रहे हैं कि महाराज श्री की कितनी कृपा है कि जब तक वो स्वयं रहे तब तक आपको सत्संग करवाते रहे, तब तक उसी आनंद के विषय में बताते रहे, और आज जब वे शरीर के रूप से हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, और तब इन संतों के रूप में विद्यमान होकर के उसी आनंद से जोड़ने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही आनंद जयंती की सबसे बड़ी सार्थकता दिखाई पड़ती है। ऐसे महापुरुष जिनको, जो शरीर से नहीं रहने के बाद भी और समाज के लिए एक आदर्श बने हुए हैं, समाज के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं, समाज के लिए और हम सबके लिए, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, हम सबके लिए। जैसा कि अभी आप पूज्य स्वामी हरितीर्थ जी से सुन रहे थे कि वे जब भी कहीं प्रवचन करते हैं तो महाराज जी को जरूर याद करते हैं। ये उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ही कोई ऐसा वक्ता हो जो महाराज जी को उद्धृत न करता हो, भले ही वो नाम न लेता हो, अलग बात है, लेकिन महाराज जी को जरूर याद करता है। और क्योंकि वो ऐसी हस्ती हैं, बिना उनकी याद के, स्मृति के भागवत करने वाला कथाकार अपने आप को अधूरा समझता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, सभी के लिए वे आदर्श हैं, सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। और जैसा आप अभी सुन रहे थे कि इस ब्रह्मपुरी में तो क्या कहें, इसका तो अहोभाग्य है। नट्टू भाई हमसे कहते हैं, और आप सबने सुना होगा कि प्रेमपुरी में तो अखंड आनंद बसा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, हम लोग उसी की अनुभूति करें। यही कहकर के उनके चरण में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। ठीक है, बधाई।

0: पूर्व पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम।
1: सौ वर्ष की याद आ गई। हमारे डालमिया जी भी बधाई गाई गई तभी आए हैं। स्वामी चिदंबरानंद जी बहुत आनंद दिया आपने उद्बोधन से, और बधाई नहीं गाते तो अधूरा ही रह जाता ना। आज गुरुदेव का प्राकट्य दिवस है, पावन प्राकट्य दिवस। हम सभी लोग आनंद की चर्चा कर रहे थे। गिरीश भाई ने कहा कि आनंद प्रकट क्यों नहीं होता है, उसका कारण वही है। हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है कि जीवन का तुम्हारे लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य अभी तक निश्चित नहीं किया तो आज ही कर लो। लक्ष्यहीन जीवन का कोई अर्थ निकलता नहीं। हम धर्म की दृष्टि से जी रहे हैं, भक्ति की दृष्टि से जी रहे हैं, या वेदांत की साधना को आगे बढ़ाते हुए जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। अगर एक लक्ष्य हमारे जीवन में हुए तो आनंद अनुभूति पूर्णता के साथ प्रकट होगा, वो तो साधना की पूर्णता में। लेकिन साधना प्रारंभ होने के साथ साथ आनंद का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप यहां से वृंदावन की योजना बनावे, जो कभी वृंदावन गया नहीं और कृष्ण प्रेमी है, तो वृंदावन पहुंचेगा तब तो आनंद आएगा ही। लेकिन जब वृंदावन पहुंचने के लिए बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन में बैठ जाएगा, तभी से वृंदावन का स्मरण होने लग जाएगा और आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर हमारे जीवन का एक लक्ष्य हुए, तो धर्म लक्ष्य हुए, देश संस्कृति लक्ष्य हुए, भक्ति लक्ष्य हुए, ज्ञान लक्ष्य हुए, अगर भगत सिंह फांसी के फंदे में झूलते हुए भी हंसते हैं, आनंदित होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उनका वजन जब फांसी की सजा सुनाई गई और जिस दिन फांसी दी जानी थी तो वजन बढ़ा हुआ था, क्यों? मौत कोई आनंद का विषय तो नहीं है? फांसी की सजा सुनने के बाद तो व्यक्ति दुखी होता है, वजन कम होता है। उनसे पूछा गया तो उनका जवाब वही था, एक लक्ष्य निश्चित था। उन्होंने कहा मेरा जीना भी देश के लिए था और मेरी मृत्यु भी देश के लिए हो रही है, ये मेरे को खुशी है। उस खुशी से वजन बढ़ा। तो हमारा अगर एक लक्ष्य है और लक्ष्य अच्छा है, देश हो, संस्कृति हो, धर्म हो, तो लक्ष्य के लिए चलने में भी एक आनंद आता है, एक खुशी आती है। ऐसा नहीं कि उसमें चलने में सब अनुकूलता ही होगी, सब लोग अच्छा ही कहेंगे, आवश्यक नहीं है। हनुमान जी महाराज को लंका में निशाचरों ने बहुत अपशब्द कहे, आप सब लोग जानते हैं, जब मेघनाथ बांध के ले गए, क्यों पाठक जी? यहां तक लिखा है कि चरण प्रहार भी। हाँ, जब ब्रह्मफाश में बांध के मेघनाथ जी ले गए तो हनुमान जी के ऊपर हंसी उड़ाते थे और महाराज मारते थे, लेकिन हनुमान जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? सम्मान मिले तो राम जी की सेवा, और अपमान मिले तो भी राम जी की सेवा, क्योंकि उनका जीवन राम जी के लिए था। राम जी के लिए काम करते हुए हमारे जीवन में जो मिले वो राम जी की कृपा है और राम जी का प्रसाद है। तो हमारा जीवन भक्ति से एक लक्ष्य में स्थिर हो जाए तो भी आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णता में तो आनंद ही आनंद होगा, जैसे हमारे महाराज जी के जीवन में आप लोगों ने देखा ही। और ज्ञान मार्ग का साधक हो तब तो कहना ही क्या है। जहां विवेक वैराग्य विद्यमान है, वेदांत में अगर आनंद में पर्दा पड़ा हुआ है तो उसका कारण वही है, वैराग्य का अभाव।
2: Thank you. नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन कथोपनिषद presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Paramashathaya Pratasmaraniyam Prempuri Adhyatma Mandal ke Adishthata Ananta Shri Bhushit Mahamandaleshwar Shri Swami Prempuri Ji Maharaj परमशुद्धय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए अध्यात्म के पथ के अनुगामी सभी आत्मस्वरूप साधक जन श्रोता जन, बड़े ही सौभाग्य से एक पवित्र प्रांगण में विराजित होकर हम लोग भगवान की श्रवण की सत्संग साधना का अनुष्ठान हम कर रहे हैं। कठोपनिषद प्रस्थान तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण रत्न है। इसमें बालक नचिकेता का स्थान, उसका जीवन, उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक नचिकेता में शास्त्र के प्रति अगाध निष्ठा, उनके मन में गुरु भक्ति और बुद्धि में स्वच्छ सम्यक विवेक है और वे जब पिता ने मृत्वे त्वाम ददामी कहकर क्रोध व्यक्त कर दिया, वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनका विवेक जग गया। विपरीत परिस्थिति में जब विवेक जग जाता है तो एक नया मार्ग व्यक्ति खोज निकालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है हमारे जीवन की कि विपरीत परिस्थिति में हम अपना विवेक खो देते हैं कि हम अपने विवेक को जगाते हैं। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में अपने विवेक को खो देता है और फिर उसके लिए कोई नया मार्ग नहीं मिलता और वही फिर उसके जीवन में विनाश के प्रति कारण बन जाता है। आज पिता ने कुछ कहा और ऐसा कहा कठोर बात मरने की कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ी कठोर बात कही, लेकिन बालक नचिकेता का विवेक नहीं खोया, विपरीत उसका विवेक और जग गया और सोच समझ करके उन्होंने निर्णय किया कि मुझे यम के पास जाना चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यम के पास जाना चाहिए, मुझे मर के ही जाना चाहिए ना, और क्या है, यम के पास कैसे जाएगा आदमी। और ये बालक नचिकेता का अभय मालूम पड़ता है। आप 16वें अध्याय में गीता के देवी संपदा श्रवण करते हैं ना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च योगश्च, बहुत सारे वहां दैवी संपदा के गुण बताए हैं, साधक के गुण। और उन साधकों के गुणों में सबसे पहला जो गुण है वो है अभयम, अभय। और बालक नचिकेता के जीवन में अभय प्रस्तुत हो रहा है, दैवी संपदा। आपके जीवन में जो भी भय है ना, वो मृत्यु मूलक भय है। हम जहां भी भयभीत होते हैं वहां भयभीत होने का मूल मृत्यु तो है। हम शस्त्र से डरते हैं क्योंकि शस्त्र से मृत्यु की संभावना है। हम अग्नि से डरते हैं क्योंकि अग्नि से मृत्यु की संभावना है, जल से डरते हैं, हम अनशन से डरते हैं, खुले में रहने से डरते हैं, माने जहां पर भी डर है, भय है, उसका मूल उसकी मृत्यु के भय में है। लेकिन आज बालक नचिकेता में ये सारे भय साक्षात भय आ गया, मृत्यु का साक्षात भय आ गया। आपके सामने अग्नि नहीं है, न जल है, न शस्त्र है, अस्त्र है, मृत्यु का कोई कारक तत्व विद्यमान नहीं है, लेकिन आज साक्षात मृत्यु है, निर्निमित्त मृत्यु है। केवल पिता ने कहा कि तुम मर जाओ तो वो मृत्यु है, और बालक नचिकेता को मालूम है पिता के वचन ऋषि के वचन है, वे व्यर्थ नहीं जाते हैं, और यदि पिता में वो सामर्थ्य नहीं है तो मैं उसका पालन करूंगा और मैं अपने पिता के वचन को सत्य साबित करूंगा। मान लीजिए कि पिता ने कहा मर जाओ और पिता के वचनों में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं तो मर सकता हूं ना, मैं तो मर के अपने पिता के वचन को सत्य साबित कर सकता हूं। ये अभय, अब हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कि आखिर व्यक्ति मृत्यु से डरता क्यों है, और मृत्यु है क्या चीज हमारे जीवन में। बालक नचिकेता जिस मृत्यु का साहस से सामना कर रहे हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग उस मृत्यु से डरते हैं। पहली बात, मृत्यु का अर्थ आप शास्त्रीय दृष्टि से विचार करते हैं तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो वियोग है ना, उसको मृत्यु बोलते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो संयोग है और उसको जन्म बोलते हैं, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो वियोग है वो मृत्यु है। लेकिन आज तक आपने मृत्यु को देखा है क्या? एक अद्वैत मकरंद छोटा सा ग्रंथ है, 27 श्लोक है उसके, उसमें श्लोक आया हुआ है, नचस्व जन्म नाशम वा दृष्टुम अर्हति कश्चन। कितना भी विद्वान कोई व्यक्ति क्यों न हो, अपने जन्म और अपने मृत्यु को वो कभी जानता नहीं है, और आपने भी अपने मृत्यु को देखा नहीं होगा, केवल सुनाए तो है, जन्म भी और मृत्यु भी। आप जन्मदिन मनाते हैं तो आप सुना सुनाया जन्मदिन मनाते हैं कि आपने देखा है? आपके माता पिता ने बोला कि इस समय आप पैदा हुए, आप मान रहे हैं, और आपके माता पिता ने बोला नहीं होता तो आपको जानने का कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं। आप कितने दिन पहले पैदा हुए, किस समय पैदा हुए, ये जानने का कोई उपाय नहीं। आप थोड़ा कल्पना करना, आपने किसी का न जन्म देखा है और न मृत्यु, और न आपने सुना है और न आपने देखा है, तो आपको कभी लग सकता है क्या कि मैं पैदा हुआ या मैं मरूंगा? आपको एक क्षण भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पैदा हुआ हूं और मैं मरूंगा। आप पैदा जरूर हुए हैं और मरेंगे भी, लेकिन दोनों चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी यदि कोई बताने वाला ना हो, अथवा हम किसी का जन्म और मृत्यु ना देखें। माने इतनी अज्ञात है, इतनी ही सुनी सुनाई बात है, इतनी परोक्ष है जन्म और मृत्यु की बात, लेकिन आखिर हम इतना मरने से डरते क्यों हैं? अब आपको चींटी को पूछना कि तुम पैदा हुई कि नहीं, और उसको ये भी पूछना आप मरोगे कि नहीं, उसको नहीं मालूम पैदा हुई है, और ये भी नहीं मालूम कि वो मरेगी, फिर भी वो मरने से डरती है। आप उसको पकड़ने के लिए जाओ तो भागेगी, घूम करके आपको काटेगी, ये क्या है? अपने मरने से बचना है, वहां पर भी मरने से बचना, आदमी में भी मरने से बचना है। भयभीत रहता आदमी मरने से सबसे ज्यादा भयभीत, आखिर क्यों भयभीत रहता है, उसका कारण क्या? आपने देखा तो नहीं। इसका एक कारण है कि हमारे जीवन का एक सूत्र है, हम वहीं जाना चाहते हैं जहां जाकर वापस आने की संभावना होती है। हम वहां जाना नहीं चाहते हैं जहां जाने पर वापस आने की कोई संभावना ना हो। आपको सुबह सुबह किसी ने कहा कि आज आप घर से बाहर नहीं निकलना, आप समुद्र के किनारे मत जाना, जाना चाहते थे आप, और किसी ने कहा योग्य प्रामाणिक ज्योतिषी ने कि आप सब आज घर से बाहर नहीं निकलना, आज यदि निकलेंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, तो आप घर से बाहर निकलोगे कि नहीं? आप ईमानदारी से, आपको यदि मालूम पड़ जाए कि आज घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, तो आप नहीं निकलोगे? आप नींद में जाते हैं कि नहीं? आप नींद में क्यों जाते हैं? क्योंकि नींद में जाकर के वापस आने का उपाय है। आप नींद में जाते हैं और उसके बाद जग जाते हैं, वापस आ जाते हैं नींद से, और आपको डॉक्टर ने बोला कि आज ये नींद जो है अंतिम है, और एक बार नींद में जाने के बाद वापस आने वाले नहीं, तो आप नींद में जाना चाहेंगे? नहीं। आप समाधि में भी जाना चाहेंगे कि नहीं? आप योगी समाधि में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि समाधि से भी बाहर आने का उपाय है, बाहर आता है वो। जब हम योग साधना करते थे तो हमारे गुरु बहुत ऊंचे महात्मा, तीन जन्म के योगी थे वो, उन्होंने एक चीज बता के रखी थी, तुम लोग जब ध्यान लगाओगे और समाधि में चले जाए, तो आसपास के लोगों को बता के रखा था उन्होंने, बोले तुम्हारा कोई नजदीक आदमी हो तो उसको बोल के रखो, ये एक नाड़ी है यहां पर, बोले उस नाड़ी को थोड़ा सा आप मालिश करो तो वो समाधि से नीचे उतर आएगा योगी, नहीं तो फिर बैठा तो बैठा ही रहेगा। और ऐसे कई प्रकरण हुए हैं, लोगों ने सोचा मर गया और उसको फिर बहा भी दिया। तो आप समाधि में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि समाधि से बाहर आने का भी उपाय है, आपको मालूम है कि थोड़े समय के बाद समाधि से नीचे उतर आएंगे। आप वैकुंठ भी जाना चाहते हैं, आप लोगों में से कोई है क्या? भगवान का धाम वैकुंठ आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो आप चलेंगे क्या? लेकिन वापस नहीं आना है। यदि आपका टूर हो जाए और देख दाख करके बढ़िया वैकुंठ का अनुभव लेकर के वापस आना हो तो सब तैयार हो जाएंगे, और वहां से यदि वापस नहीं आना हो तो? इसलिए आदमी लोक लोकांतर में भी कब जाना चाहता है? मरने के बाद वो चाहता है, यहां पूरा जीवन हो और यहां पूरा होने के बाद फिर जाएंगे, पहले नहीं। आपको बीच में यदि कोई बोले कि चलो तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार नारद जी महाराज वैकुंठ गए और नारद जी महाराज ने देखा वहां का ऐश्वर्य वैकुंठ का, वाह। नारद जी महाराज ने भगवान से कहा कि इस पृथ्वी लोक में कितना दुख है, इतना दुख है, खटिया पे बैठो तो खटमल और थोड़ा गंदगी ज्यादा हो तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आक्रमण करते, मच्छर, यहां तो दुख ही दुख, खटमल है, मच्छर है, गंदगी है, कांटे, कंकर, इतना पॉल्यूशन, गर्मी, जाड़ा, बरसात, और उल्टा यहां गरीबी इतनी है, भूखे नंगे लोग घूम रहे हैं। अरे बोली यहां दुख ही दुख पृथ्वी में, और क्या वैकुंठ लोग, वहां न खटमल है, न मच्छर है, न गंदगी है, आहा खुली खुली हवाए, और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, सुगंध। बोले वाह क्या सुंदर जगह है तुम्हारी वैकुंठ, और पृथ्वी लोग तो तुमने क्या बना रखा है। नारद जी ने कहा कि सारे पृथ्वी के जो लोग हैं यहां ले आओ वैकुंठ, अथवा तुम पृथ्वी लोक को वैकुंठ बना दो। तो भगवान ने कहा कि भैया ये कर्म है, कर्म के अनुसार आदमी का जीवन बनता है, आदमी जब पाप करता है तो दुख भोगता है, और दुख के निमित्त यही मच्छर, खटमल, काटे, विषाद। बोले वहां है, लेकिन नारद जी महाराज कहने लगे नहीं तुम बहाने बना रहे हो, ऐसा कौन आदमी होगा कि जो जीवन में दुख भोगना चाहिए। तो भगवान ने, बड़ी मजेदार घटना है ये, कहीं पुराण में होगी कि नहीं लेकिन महात्मा सुनाते बहुत मजेदार। भगवान ने कहा भैया एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक में जाओ और पृथ्वी लोक में जा करके जितनी लोगों को तुम ला सकते हो वैकुंठ तुम ले आओ, तुमको मैं अधिकार देता हूं, तुम साधु हो, तुम्हारा जिसको स्पर्श हो जाए वो व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश योग्य मैं बना दूंगा। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने सोचा आप मैं तो पूरे पृथ्वी को छू लूंगा और यहां सब लोगों को बुला बुला करके मैं वैकुंठ ले आऊंगा। नारद जी महाराज गए, सबसे पहले प्रेमपुरी आए, इतना सुंदर सत्संग आए और आ करके नारद जी महाराज ने जय हो दरवाजे पर आके बिना बजा दी और कहा कि सुनो भाई सुनो, बंबई के लोगों तुम लोग बड़े दुखी हो परेशान हो और तुम सबको ले जाने के लिए मैं आया हूं, मैं वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूं। अच्छा बताओ कि जब नारद जी महाराज ने ऐसा आपको बोला तो आपने क्या बोला होगा? आपने यही बोला ओहो वो बहुत अच्छा बहु रुपया है यार, और इसी में से कोई ज्यादा धार्मिक होगा तो लो दो रुपए निकाल के। नारद जी महाराज ने कहा रुपयों के लिए नहीं आया भैया, मैं चंदा एकत्रित करने के लिए नहीं आया, मैं वैकुंठ। अरे बोले हाँ ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, कौन वैकुंठ जाता है? कई लोगों ने कहा इसका दिमाग सरक गया है, क्या है बहु रुपया, किसी ने नहीं माना। नारद जी महाराज परेशान हो गए, स्वयं नारद जी महाराज, और संभावना तो यही है आज भी यहां प्रत्यक्ष नारद जी महाराज जी आएंगे तो आप क्या कहोगे उनको? आप नारद कहेंगे कि बहु रुपया? अच्छा आप भगवान राम को मानते हैं और साक्षात प्रभु श्री राम आपके सामने आए और बोले कि भैया मैं आ गया हूं, बहुत दिनों से आप भोग लगा रहे हो लेकिन पेट नहीं भर रहा है, आज भोजन करूंगा, तो आप क्या कहोगे? बगल वाले का घर दिखाओगे आप? वो बहुत धार्मिक है गिरी जी, बहुत धार्मिक है, बोले उनके यहां जाओ। बोले मुश्किल है, नारद जी महाराज को सबने सरका दिया। नारद जी महाराज जी सोच रहे थे कि कम से कम एक आधा तो तैयार हो, अरे कोई एक भी तैयार नहीं हुआ, हर आदमी कोई ना कोई बहाना मारा टाल रहा था, नारद जी महाराज से बच रहा था। एक वृद्धा बैठी थी और मरणासन 135 वर्ष की और बस आज गई तब गई, ऐसी इतनी मरणासन। नारद जी महाराज सोचे है कि ये तो जरूर चलेगी अरे अब इतनी मरणासन्न, और नारद जी महाराज सोच रहे थे कम से कम एक आदमी तो ले जाऊं, लाश तो रह जाए। वहां गए और प्रणाम किया, दादी जी प्रणाम, और मैं नारद पहचाना कि नहीं? बुढ़िया ने बोला ओ बहुत अच्छी बात, हाँ पहचान गई, उसको भी कोई बात करने वाला आदमी चाहिए था, अब वृद्ध आदमी से तो ऐसे ही बात करने वाला कोई नहीं होता है। वो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले पहचान गई भैया आओ बैठो, बोले नारद हो तुम? और वो भी अंदर अंदर सोच रही थी अच्छा बहु रुपया बन के आया है। नारद जी ने कहा कि मैं आपको वैकुंठ लोग ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, घंटों बात किया और जब चलने की बात आई तो बोली कल आ जाओ। दूसरे दिन नारद जी गए और घंटों बात हुई और चलने की बात आई, बोले कल आ जाओ। नारद जी महाराज ने कहा कब? कल कल। उन्होंने कहा कि थोड़ा रुको, अभी पोती की शादी होने वाली है, तब तक नारद जी घूमते रहे। संक्षेप में अब नारद जी ने एक दिन कहा, आज तो दादी जी प्रेम भी हो गया था थोड़ा, अधिकार से बोला आज तो मैं आपको जरूर ले चलूंगा वैकुंठ। उस वृद्धा ने नारद जी महाराज को कहा कि अरे तुमको और कोई दूसरा मिलता नहीं क्या? अरे तुम सुबह होते ही पहुंच जाते हो और चलो वैकुंठ, कोई दूसरा नहीं मिलता है मुंबई में, दूसरा नहीं मिलता इस पृथ्वी मंडल में। बोले मुझे वैकुंठ वैकुंठ कहीं नहीं जाना है, यही मेरा घर वैकुंठ है। समझ गए कि नहीं? तो आप भी चलोगे क्या? आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, आप वैकुंठ वैकुंठ शिवलोक, आप प्रतिदिन भगवान के धाम की चर्चा करते हो, लेकिन यदि सचमुच आपने को चलना होगा तो कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। कबीर जी की बात है ना, एक बार कबीर जी ने घोषणा कर दी कि आओ भैया आज मैं तत्व ज्ञान दूंगा, सबको तत्व ज्ञान प्रदान करूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि आज ज्ञान होगा, भगवान मिलेंगे, और एकम विज्ञान है ना सर्वम विज्ञातम भवती। कबीर जी महाराज ने घोषणा कर दी, मैं ऐसा मंत्र दूंगा

हमको मोक्ष चाहिए, सारी चीजें मांगने लगे। कबीर ने कहा रुको रुको, ये मशाल जिसके हाथ में मैं दूंगा बस उस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा आप बताइए कि जब उनको मालूम पड़ा लोगों को कि इस मशाल में ही कोई रहस्य है और ये मशाल जिसको देंगे उसको सब कुछ मिलने वाला है और एक ही मशाल है, और आप भी यदि उस भीड़ में होते तो क्या करते हैं? टूट पड़ते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, छीना छपटी होने लगी और वहां कबीर की टांग पकड़ के भी लोग खींचने लगे। आपको चाहिए ज्ञान चाहिए और सचमुच मालूम पड़ा इस मशाल में सब कुछ है तो आपको मशाल दिखेगी कबीर दिखेंगे। कबीर ने कहा रुको रुको, है तो सब कुछ इसी मशाल में, लेकिन मशाल ले जाने का मंत्र भी है, वो भी तो पहले सुनो। ऐसे ही मशाल मिलेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने कहा बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अब वहां एक मशाल थी, भीड़ ज्यादा थी और हर आदमी चाह रहा था कि मशाल हमको मिल जाए हमको मिल जाए। कबीर ने कहा कि मशाल जिसको मैं दूंगा उसका एक मंत्र है, ये मशाल ले जाओ अपने घर और अपने घर में ले जाके अपने घर में आग लगा के आ जाओ और उसके बाद फिर आपको मोक्ष मिलेगा, जो चाहो तुमको मिलेगा, लेकिन शर्त है ये मशाल ले जा करके पहले अपने घर में आग लगा के आना। अच्छा मैं पूछता हूं कितने लोगों ने वो मशाल ली होगी? ये अतीत है, ये अतीत को जलाने की बात बोल रहे हैं। हमारी जो आसक्तियां है ना अतीत से बंधी हुई हैं। आप वर्तमान में हैं, कुछ करना चाहते हैं और हमारा जो मन है वो अतीत में खींचता है, वासनाएं अतीत में खींचती हैं। भविष्य हमें आकांक्षाओं में इच्छाओं में योजनाओं में खींचता है और हम वर्तमान से वंचित हो जाते हैं। साधना वर्तमान का जीवन है, आप जप करते हैं ध्यान करते हैं, सारी चीजें वर्तमान की चीजें हैं। तो मैं आपको एक सूत्र कह रहा था कि हम वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहां से हमें वापस लौटने की संभावना हो, और वहां से वापस लौटने की संभावना ना हो तो हम वहां जाना पसंद नहीं करते। नींद में समाधि में लोक लोकांतर में भी हम जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहां से लौटने की कोई संभावना नहीं है। अब मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं कि आपको ऐसी सुविधा मिल जाए जैसे मरने के बाद वापस आने की सुविधा मिल जाए। आप मरने से क्यों डरते हैं? आप मरने में जाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि मरने में जाने के बाद आदमी वापस जीवन में नहीं आता है और आपके जीवन का सूत्र है हम वहीं जाना चाहते हैं जहां से वापस आने की संभावना हो, और हम मरने में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां से वापस आने की कोई संभावना न हो, और संभावना यदि बने तो यदि संभावना बने कि मरने के बाद भी लौटने की, तो आप कितने भी मार मरो कितने भी बार मरो क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप सो गए जग गए, सो गए जग गए। इसलिए वस्तुतः हम मरने से नहीं डरते हैं, हम मरने में जाने के बाद वापस नहीं आने से डरते हैं, वापस नहीं आ पाते हम। लेकिन एक प्रश्न है कि हम वापस क्यों आना चाहते हैं? ये दूसरा सूत्र आपके जीवन का है कि हम हमारी जो वासना जहां पर होती है ना वहां पर वापस आना चाहते हैं। हम हमारा मन वहीं वापस आता है जहां पर हमारी वासना है, हमारे केंद्र हैं, जहां पर अपनत्व है। यहां जैसे प्रवचन समाप्त होगा तो आप कहां जाएंगे? आप जहां से आए हैं ना आप वहां जाएंगे, और आप बिना मार्ग चुके बिल्कुल आप कहां पहुंचेंगे? अपना घर, अपना बिस्तर। आपको मालूम है आपके बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके पोते आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका घर आपका प्रतीक्षा कर रहा है, आपका मन आपका लगाव आपकी आसक्तियां वहां पर हैं, आप खींच करके वहां आप जाना चाहते हैं।

0: ऐसे हम मृत्यु में जाने के बाद वापस आना चाहते, कहां वापस आना चाहते हैं? जीवन में, और क्या, जहां पर भी हमारी आसक्ति है ना, वहां पर आना चाहते हैं हम वापस। और हमारी आसक्ति है वर्तमान जीवन के साथ, हम अपने जीवन से इतना प्रेम करते हैं और जीवन संबंधी वस्तुओं से भी। इसलिए कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि जब मरने की बात आती है ना, तो सारी चीजें छूटने की बात आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मरने के बाद ये चीज छूटेगी, ये छूटेगी, ये चेला छूटेगा, चेली छूटेगी, पुत्र छूटेंगे और पुत्रियां छूटेगी, मकान छूटेगा, धन छूटेगा, बहुत सारी चीजें छूटेगी। तो उस समय मृत्यु नहीं दिखाई देती है, छूटने वाली सारी चीजें दिखाई देती हैं। और वो छूटने का जो भय है ना, यही मृत्यु का भय बन करके हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए हमारे जीवन में मृत्यु का भय नहीं है, अपितु ये सारी चीजें छूटने का भय है। ये जीवन के प्रति जितनी हमारी आसक्ति होगी, उतना ही हमारे जीवन में मृत्यु का भय होगा। और जीवन के प्रति जितनी आसक्ति कम होगी, उतना ही मरने का भय उतना कम होगा। आप समझ गए ना? आप जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का अर्थ क्या, ज्ञानी में मृत्यु का भय नहीं होता है। उसका कारण यही है, ज्ञानी की वर्तमान में कहीं पर भी शरीर अथवा शरीर संबंधी पदार्थों में आसक्ति नहीं है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.